जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। अब हमारी आज की सभा शुरू होती है। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आइए मिलकर अपने दिन की शुरुआत करें आजाद हिंद गान के साथ।

गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। एक और खूबसूरत पावन दिन में आपका स्वागत करता हूँ। नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। नवरात्रों का ये स्पेशल कार्यक्रम इस पूरी सीरीज में 9 के 9 दिनों में 9 शक्तियों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी चर्चा कर रहे हैं। आप भी अपने मनोभाव यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं। आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगदम्बा की आराधना के साथ।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, सुप्रभातम। आपका बहुत खूबसूरत और पावन दिन में स्वागत करता हूं। मैं हूं वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। दोस्तों, नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रे वो पावन दिन होते हैं, वो पावरफुल दिन होते हैं जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकते हैं। अगर लंबे समय से कोई समस्या घर में परिवार में चली आ रही थी तो वो यहां पर खत्म हो सकती है, बशर्ते कि हमें पता होना चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए, मां दुर्गा के 9 स्वरूपों से या 10 महाविद्याओं से क्या चाहिए, हमारी जिंदगी की मेन परेशानी क्या है। अगर आप अपनी कुंडली से, आप ग्रह नक्षत्रों से परेशान है तो आपको किस रूप की पूजा करनी है। अगर आपको जीवन में मोक्ष चाहिए, आपको इस सांसारिक मोह माया से पीछा छुड़ाना है, तब किसी और रूप की पूजा करनी है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, है ना, माँ दुर्गा के तो अनंत मंत्र है, अनंत ऐसे उनके जो मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, सब चीजों में बहुत शक्ति है। हमें क्या चाहिए ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं इस एक और पावन सत्संग की, जहां पर माँ शक्ति की आराधना की बात करते हैं। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिव्याहम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11th अक्टूबर एट हारमनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहां किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ।

0: प्रतीति कपि भजे सदा धरे उर ध्यान, तैके कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान।
1: नवरात्रों के इस पावन मौके पर आपका स्वागत करता हूँ, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। भक्तजनों, ये बहुत ही खूबसूरत और पावन दिन है। देखिए, बहुत से लोगों को ये दिन देखना नसीब नहीं होता, हमें हुआ है। हम सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं। महामाई जगदम्बा, मां त्रिपुर भैरवी सुंदरी, मां पीताम्बरा, अम्बे अम्बा अम्बालिका की कृपा है। जिस भी नाम को, जिस भी रूप को पूजेंगे, आपको शक्ति का आभास हो जाएगा। और मेरा भरोसा है कि आपने कभी ना कभी किसी न किसी रूप में महामाई जगदम्बा की किसी न किसी शक्ति को फील जरूर किया होगा। जब कभी हम अकेले पड़ जाते हैं ना, जब कभी हम दुनिया के इन सारे झंझटों से थक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, तब कोई एक शक्ति का पुंज, वो एक शक्ति की किरण आती है जो यह आभास कराती है कि मैं हूं बेटा, मैं हूं तेरे साथ। तो आप कोई भी हो, आपके जीवन में जब भी कोई ऐसी विकट समस्या खड़ी हो जाए, तो महामाई जगदम्बा, अम्बे अम्बा अम्बालिका, मां त्रिपुर भैरवी सुंदरी, वो महामाई पीताम्बरा सोने के सिंहासन के ऊपर विराजमान, सूर्य से भी करोड़ों गुना ज्यादा तेज चमकता हुआ, उसका तेज जो हमारे जीवन को बदल रहा है, ऐसी फीलिंग लेनी चाहिए, ऐसी मनोभाव होने चाहिए। यकीन मानिए, जिस घड़ी आप इस बात को फील करते हैं, आपका जीवन रूपांतरित हो जाता है। कभी कृपा महसूस हुई है आपको, तो थैंक यू बोलिएगा और मुझे बताइएगा। 9639012111 पर आपकी जिंदगी के क्या वो एक्सपीरियंस है जो दूसरों को पता चलने चाहिए, भक्तों तक इस सत्संगी कार्यक्रम में पहुंचने चाहिए। गुड मॉर्निंग, जय माता की।

भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर जीवन धारा सुप्रभात सुनते रहिए।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत करता हूं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूं वास्तु कृष्णा और नवरात्रों की इस स्पेशल कार्यक्रम में, इस पूरी सीरीज में, आजकल हम मां शक्ति की, मां आराधना की बात कर रहे हैं। हर रोज हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी बातें हों जिनसे हमें हमारी शक्तियों के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानकारी मिले, पता चले। आप भी किसी न किसी मंदिर में जरूर जाते होंगे जहां की शक्तियों को आपने फील किया होगा, जहां पर जाने से आपका जीवन बदल गया होगा, रूपांतरित हो गया होगा। अगर कभी किसी ऐसे मंदिर में आप नहीं भी गए हैं, जाने की तमन्ना है, इच्छा है, तो उसके बारे में आप हमें भी बता सकते हैं। किसी शक्ति पीठ की कोई महिमा है तो वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। बाकी जो हमारे श्रोता हैं उनके साथ में आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हमारा नंबर है 9639012111। इस नंबर पर अपने ऑडियो में रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए, मैं यहां पर जरूर चलाऊंगा कि आपको अपनी जिंदगी में कौन सा तजुर्बा हुआ जब आपने मां की शक्ति को फील किया बहुत करीब से।

गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। और ये बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है दोस्तों, जहां पर हम महामाई जगदम्बा के चमत्कारों की बात करते हैं, उनकी शक्ति, उनको और करीब से पहचानने का मौका मिले हमको। नवरात्रों का पावन टाइम चल रहा है। सुभारती परिवार की तरफ से, आजाद हिंद रेडियो की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और आपको ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी को बदलने के लिए चाहिए बस क्या, चाहिए बस आपके मन में भाव। भगवान को, ईश्वर को हम कुछ दे नहीं सकते, सब कुछ उसी का तो दिया हुआ है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मोरा, है ना, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। फूल पत्ती दीप, ये जो धूप दीप हम करते हैं, सब कुछ उसी का तो दिया हुआ है, भला हम क्या उनको दे सकते हैं। तो हम बस दे सकते हैं भाव हमारे भीतर, जिस वजह से हम इस धरती पर आए, हमें भेजा गया और इस दुनिया के सांसारिक मोह माया में फंसकर हम भूल बैठे हैं। तो हमें फिर से वो दिन याद आ जाए कि हम यहां क्यों आए थे, उस परम शक्ति ने हमको यहां क्यों भेजा था। जब हम इस बात को एहसास करना शुरू करते हैं तो फील आता है, फिर पता चलता है कि मां शक्ति की जो असली पावर है वो हमारी जिंदगी को बदलने के लिए, और वो हर घड़ी हमारे साथ है। कभी भी खुद को अकेला तन्हा मत महसूस कीजिए। कभी भी ये मत सोचना कि मैं अकेला हो गया या हो गई हूं, मेरा कोई साथ नहीं देता। कभी भी आप अनाथ नहीं हो सकते। जो परम चेतना है, जो परम सत्ता है, जिसने सारा ब्रह्मांड रचा है, वो आपको अकेला कैसे छोड़ सकता है। जिसके ब्रह्मांड में इतना भी ग्लिच नहीं है कि आज सूरज यहां के बजाय यहां से निकल सकता है, हर कुछ फिक्स है। इतनी बड़ी शक्ति भला आपको अकेला छोड़ देगी? आपके पैदा होने से पहले जिसने यहां आपके लिए सारा सिस्टम रच दिया था, वो भला आपको अकेला छोड़ दे? ऐसा नहीं होता। हम मोह माया में फंस जाते हैं, इस संसारिक मोह माया के पाश में बंध जाते हैं और हम फील नहीं कर पाते, इसलिए हमको लगता है भगवान हमारे साथ नहीं। जो इंसान इस बात को महसूस करना शुरू कर देता है कि वो है मेरे साथ, वो परम चेतना मेरे ही भीतर मौजूद है, तब आपके जीवन में चमत्कार, रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आज के समय में ट्रांसफॉर्म करने की, जिंदगी को बदलने की पावर पैसे में बताई जाती है, पर पैसा भी वो नहीं कर सकता जो वो परम चेतना कर देती है। इसीलिए उसको परम शक्ति बोलते हैं, महामाई जगदम्बा, अंबे अंबा अंबालिका मां, त्रिपुर भैरवी सुंदरी मां कात्यायनी। किसी भी रूप में आप उसको पूजना और याद करना, बस हिलीम हिलीम हिलीम, महामाई शक्ति का ये मंत्र, बीज मंत्र भी बोलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, जय माता की। आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं सुभारती परिवार की तरफ से।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इस कार्यक्रम में महामाई शक्ति की बात करते हैं, उनको कैसे फील कर सकते हैं, वो क्या है, हमको क्या बताती हैं, क्या सिखाती हैं। और आपने कभी अगर एक्सपीरियंस किया हो ना, माँ शक्ति के किसी मंदिर में गए हो। देखिए, हमारे मेरठ में भी बहुत सारे शक्तिपीठ हैं, जैसे कि माँ मनसा देवी का मंदिर है ना, मेडिकल कॉलेज, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज गढ़ रोड पर स्थित है, उसके सामने वहां पर है, करोड़ों लोग जाते हैं। और नवरात्रों में तो वहां नंबर भी नहीं आता, इतनी भीड़ होती है। नवरात्रों के अलावा आप आसानी से वहां किसी भी दिन जा सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। आपको एक और बात बताना चाहता हूं मैं यहां पर, हमारे सनातन में कभी भी ये परंपरा नहीं थी कि आप मंदिरों में जाइए और कोई कोई प्रसाद लेकर वहां पर चढ़ाकर आकर चले जाइए। ये जितने भी शक्तिपीठ है ना, यहां पर जाकर आराधना करनी थी, बैठना था, ध्यान करना था। भीड़ के चलते अगर आप मंदिरों में आराधना या ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो आप ऐसे टाइम पर जाइए जब नवरात्रे नहीं चल रहे हो या जब भीड़ भाड़ ना हो। आप उस प्रांगण में, उस शक्तिपीठ के आसपास बैठ जाइए, थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, ध्यान लगा लीजिए। सबसे बड़ी शक्ति वही है दोस्तों। मंदिरों का निर्माण कभी भी इसलिए नहीं हुआ था कि एक दिन आप जाएंगे और वहां पर थोड़े पैसे चढ़ाकर, फूल पत्ती या धूप दीप चढ़ाकर आ जाएंगे, प्रसाद चढ़ाकर चले आएंगे। नहीं, मंदिरों का निर्माण इस वजह से हुआ था कि इन मंदिरों में, इन शक्तिपीठ में हम जाकर बैठेंगे

और जिस भी चीज की कमी हमारी जिंदगी में होगी, ये शक्तिपीठ वही हमारे भीतर भर देगी, वही शक्ति और ऊर्जा हमारे मन के अंदर, दिमाग के अंदर, जीवन के अंदर रूपांतरित होना शुरू हो जाएगी। तो इन मंदिरों में जब भी जाएं, चाहे मेरठ के किसी मंदिर में जाएं या बाहर दूर दराज किसी मंदिर में जाएं, वहां पर बैठिए, वहां पर ध्यान लगाइए मां शक्ति को। जहां पर भी बैठकर आप याद करेंगे मां शक्ति के किसी भी मंत्र का जाप करेंगे, बीज मंत्र का जाप करेंगे, कोई श्लोक, आप जैसे भी आप उनकी पूजा करना चाहें, जैसे भी आप उनको फील करेंगे, वैसे ही वो आपके सामने होंगी और कभी भी वो आपको अकेला नहीं छोड़ती।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस बीडब्ल्यू प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11th अक्टूबर एट हारमनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यू ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में हम टीबी के रोग की बात करेंगे। टीबी का जो रोग होता है बहुत भयानक होता है। पुराने जमाने में न जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते थे टीबी रोग के बारे में, क्योंकि ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। आज भी अवेयरनेस तो है, लेकिन शर्म कहीं ना कहीं आज भी लोगों के मन के भीतर घर करी हुई है। अगर किसी को टीबी हो जाता है या उसके परिवार में टीबी का पता चल जाता है, तब भी लोग इस बात को किसी को बताते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि समाज में उनका बहिष्कार हो जाएगा, उनके बच्चे की शादी नहीं होगी, लोग उनसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे, है ना, ऐसा उनको लगता है, जबकि ये सच नहीं है। दोस्तों, टीबी अब कोई ऐसी बीमारी नहीं रही है कि जो जानलेवा हो, अगर टाइम पर आप उसकी दवा लेना शुरू कर देते हैं। दवा पूरी तरह से मुफ्त है, सरकार के जो पूरा का पूरा सिस्टम है, तंत्र है, वो आपके लिए लगा रहता है। इसमें सरकारी डॉक्टर्स हैं, निक्षय टीम है। इसके अलावा जैसे सेहत से ही लाभ कई कार्यक्रम के माध्यम से स्मार्ट एनजीओ भी लगातार आप तक जानकारी पहुंचाता है। हमारे आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से हम भी यहां पर लगातार जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सरकार भी नित नए आयोजन करती रहती है। अब ऐसे में जिम्मेदारी आपकी बनती है दोस्तों कि कैसे आप टीबी को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए इस बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमने आज बात की है मेरठ जिले के ट्रीटमेंट सुपरवाइजर डॉक्टर विशाल राणा जी से। पूरे जिले में कहां पर दवाइयों का वितरण किस प्रकार होता है, कहां पर आयोजन हो रहा है और किस तरीके से मरीजों की सहायता होगी, ये सारी जानकारी हमें इनसे प्राप्त हुई। तो आइए छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं डॉक्टर विशाल राणा जी से।

0: जब प्राइवेट में इलाज कराता है, जैसे आपने बताया सरकारी इलाज में तो सारी दवाइयां चेकअप सब कुछ फ्री होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास अगर कोई अपना टीबी का इलाज कराने जाता है तो क्या वो डॉक्टर को पैसे देता है या वहां पर भी सरकार फ्री करा देती है?
1: नहीं, बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट में इलाज कराता है तो उसको प्राइवेट डॉक्टर के नियमों के आधार पर चलना पड़ेगा। अच्छा। वो डॉक्टर उसकी जो जांच कराए, एक्सरे कराए, बलगम कराए या और भी कोई जांच कराए और जहां वो कराए, जहां के लिए सजेस्ट करे, तो वो जांच वो रोगी कराता है उसके हिसाब से। अगर डॉक्टर उचित समझता है, रोगी की आर्थिक हालत को देखते हुए अगर कहता है कि ठीक है ये जांच आप सरकारी में करा लो, या जो हमारी एक टीम है जो प्राइवेट डॉक्टर से ही कोऑर्डिनेट करती है, सरकार द्वारा एक एनजीओ को भी नियुक्त किया हुआ है, वो लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ जाके उनको काउंसिल करते हैं, उनके यहाँ पे आए हुए रोगियों को एनरोल करते हैं हमारे सिस्टम में और उनको भी सपोर्ट देते हैं, उनके होम विजिट करते हैं, उनको 500 रुपये महीना दिलाने के लिए सारे काम करते हैं। तो निर्भर करता है उस डॉक्टर के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने मरीज को देखता है।
0: लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों, अगर आप भी कहीं से हमको देख और सुन रहे हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ये बताया कि आप सरकारी सिस्टम में अगर आएंगे तो सरकार आपका ध्यान भी रखेगी, आपको पैसे वगैरह भी देगी और आप प्रॉपर दवा खा रहे हैं या नहीं ये भी, जैसा कि सर ने बताया, वो टीम इस बात का ध्यान रखती है, क्योंकि इसकी जो सबसे अहम बात है कि दवाई एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर हमको राणा जी ने इतनी काम की बात बताई है कि अगर आपके घर में टीबी का मरीज हो जाता है तो उसके साथ साथ पूरे परिवार को कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, परहेज रखना है, एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन रखना है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरे परिवार का भी एक ट्रीटमेंट चलता है, वो सरकार की तरफ से पूरी तरह से निःशुल्क होता है। सर, अगर कोई जानना चाहे, टीबी के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहता, अपना इलाज कराना चाहता है, तो आप लोगों से या सरकारी सिस्टम से वो किस तरह से सहायता प्राप्त कर सकता है?
1: देखिये, वैसे तो पूरे मेरठ को डिसेंट्रलाइज करके सरकार ने हर व्यक्ति के नजदीक में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सब जगह टीबी की जांच के इलाज की सुविधाएं शुरू की हुई है। बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, पैरेलल अस्पताल है, वरना कोई जहां भी रहता हो, वो मेरठ में शहर में रहता हो, वो मवाना, वो हस्तनापुर, वो भूड़बराल, वो सरदना, जहां रहता हो उसके ब्लॉक में, उसके आसपास में छोटे बड़े अस्पताल हैं। फिर भी अगर किसी को कोई जानकारी ऐसी लेनी हो तो मैं अपना नंबर यहां दोहराने जा रहा हूं। कोई भी व्यक्ति निसंकोच टीबी से

संबंधित किसी भी समस्या के लिए मुझे फोन कर सकता है और जानकारी ले सकता है। मेरा नंबर है 9917717273। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ अपना नंबर 9917717273। तो कोई भी शंका होने पर, कोई भी जानकारी, किसी भी आवश्यकता में कोई भी आपका श्रोता निसंकोच मुझे फोन कर सकता है।

0: ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कई। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ, तो सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

0: जी हाँ दोस्तों, सेहत से ही लाभ कई सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर आप सुन रहे हैं। स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति है, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। और इस खास एपिसोड में आज हमने डॉक्टर विशाल राणा जी से बात की, जो कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं जिला मेरठ के। और चलते चलते सर, आपका क्या संदेश रहेगा हमारे श्रोताओं के लिए?
1: बस मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी व्यक्ति सावधानी रखें, खासतौर से टीवी के रोगी अपने मुंह पर कपड़ा लगा के रखें, मास्क लगा के रखें, खांसते छींकते थूकते, और अपना इलाज पूरा करें। इलाज पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप एक आदर्श नागरिक होने का फर्ज निभाते हैं, आदर्श रोगी होने का फर्ज निभाते हैं। और बाकी सरकार और हम पूरा सिस्टम हमेशा इस रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी के साथ है। मैं फिर से आजाद हिंद चैनल का धन्यवाद देता हूं कि इतना जागरूकतापूर्ण कार्यक्रम उन्होंने लिया, अपना समय दिया, और मैं समझता हूं कि जरूर इस जानकारी से हमारे शहर के, हमारे देश के बहुत लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, बहुत ही काम की जानकारियां आपने यहां पर हमारे श्रोताओं के लिए दी। मैं चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप सीधा सरकारी अस्पतालों में जाकर संपर्क कर सकते हैं। और जैसे कार्यक्रम में सर ने भी अपना मोबाइल नंबर भी बताया, तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और सुनते रहे सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर ये खास प्रस्तुति, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। अगर कोई और जानकारी टीबी रोग के बारे में आपको चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो हमारा नंबर है 9639012111। होगी आपसे फिर अगली कड़ी में मुलाकात। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। हर बीमारी को जड़ से हटाना है, ये संकल्प करके रहिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

जय हिंद। आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और अब आप सुनेंगे ये खास प्रस्तुति जिसके प्रस्तुतकर्ता हैं स्मार्ट एनजीओ।

दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीबी नामक रोग के बारे में, यानी क्षय रोग। अगर समय पर पहचान हो जाए तो टीबी का पूरा इलाज संभव है, पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इस बीमारी का नाम क्षय रोग, टीबी रोग या ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। ये सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों जैसे हड्डियों, दिमाग, किडनी और रीढ़ की हड्डी में भी ये हो सकता है। हमारे एक एक्सपर्ट डॉक्टर के अनुसार

नाखून और बाल को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से में ये बीमारी हो सकती है। टीबी फैलती कैसे है? जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता, छींकता या जोर से बोलता है तो हवा में छोटे छोटे कीटाणु फैल जाते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति इन्हें सांस के साथ अंदर ले ले तो उसे भी ये संक्रमण हो सकता है। ध्यान रखें, टीबी हाथ मिलाने से, साथ बैठने से, खाना साथ में खाने से या एक दूसरे के कपड़े छूने से नहीं फैलती। टीबी के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं दोस्तों, 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक लगातार खांसी रहती है, बलगम में खून आता है, बुखार विशेषकर शाम के समय चढ़ता है, रात में ज्यादा पसीना आता है, तेजी से वजन घटता है, भूख कम लगती है, कमजोरी और थकान ज्यादा महसूस होने लगे। यदि ये लक्षण दिखाई दें, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर संपर्क कीजिए। सरकार पूरी तरह से निशुल्क आपको इसका पूरा इलाज मुहैया कराती है। सरकार टीबी के मरीजों की किस प्रकार और मदद करती है? सबसे पहले सरकार का एक लक्ष्य है टीबी मुक्त भारत। सरकार द्वारा टीबी की जांच निशुल्क की जाती है, पूरी दवा बिल्कुल निशुल्क मुफ्त दी जाती है, मरीज का इलाज और नियमित फॉलोअप भी किया जाता है। इलाज के दौरान पोषण के लिए निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत मरीजों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है ताकि वे पौष्टिक भोजन कर सकें। कई स्थानों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता मरीज के घर तक दवा पहुंचाते हैं और दवा नियमित लेने में भी मदद करते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा मरीज आपको दिखता है जिसको टीबी हो सकती है या किसी को टीबी है, उसकी मदद आपको भी करनी चाहिए। टीबी की दवाएं सरकारी अस्पताल पर बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं। आप इन्हें हमेशा समय से लेकर तयबद्ध तरीके से खाएं। इलाज को पूरा करना है, कभी भी इलाज को बीच में नहीं रोकना है। एक बार टीबी की दवा शुरू होने पर अगर आप इलाज बीच में रोकते हैं तो कुछ समय बाद टीबी वापस लौट कर आती है और पहले से ज्यादा भयानक रूप के साथ आती है, यानी पहले जो टीबी हुई थी उससे भी ज्यादा खतरनाक इस बार ये बनकर लौटी है। बीमारी दोबारा लौट सकती है, पहले से ज्यादा गंभीर हो सकती है, दवाओं का असर भी कम हो जाता है और इस बार टीबी को नाम दिया गया है MDR टीबी, यानी पहले से भी भयानक टीबी। इसीलिए कभी भी टीबी बीमारी की दवाइयों को रोकना नहीं है, इलाज पूरा करवाना है। डॉक्टर जितने महीने जितने समय दवा खाने के लिए बोलें, इलाज पूरा कराएं। आपकी तमाम जांचें बिल्कुल निशुल्क सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं, सभी दवाइयां सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। सरकार मरीज को पैसे से भी मदद करती है, दवाइयों से भी मदद करती है और समय समय पर निक्षय पोटली यानी के खाने के लिए प्रोटीन युक्त कुछ चीजें भी देती है। तो आगे से हमेशा हमें ध्यान रखना है, लगातार खांसी रहे तो जांच कराएं, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढक लीजिए, घर में ताजी हवा और धूप आने जाने का रास्ता हमेशा होना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, धूम्रपान तंबाकू और शराब से दूरी बनानी है, डॉक्टर ने जो बात बताई है, जो दवाइयां बताई है, उनको नियमित रूप से और पूरा लेना है। कोई भी दवा बीच में नहीं रोकनी, अपनी मर्जी से कोई दवा बढ़ानी नहीं है, कोई दवा घटानी नहीं है। मरीज के संपर्क में जो लोग आ गए हैं उनको भी अपनी जांच करानी चाहिए। अगर किसी परिवार में किसी को टीबी है, उस परिवार के तमाम लोगों की जांच निशुल्क होती है, करानी चाहिए। छोटे बच्चों की भी जांच करानी चाहिए और कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और अंतिम संदेश, याद रखिए, टीबी छिपाने की नहीं इलाज कराने की बीमारी है। बहुत से लोग टीबी को छुपा कर रखते हैं, सामाजिक शर्म की वजह से, हीन भावना की दृष्टि से बचने की वजह से। लेकिन दोस्तों, टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है। जिन लोगों ने सरकार की मदद से टीबी का पूरा इलाज कराया है, आज वे बिल्कुल अच्छी तरह से स्वस्थ हैं और एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। इसीलिए अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि टीबी के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत सरकारी अस्पताल में जाकर संपर्क कीजिए या आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। आज की ये कड़ी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्मार्ट एनजीओ, जिसे आपने सुना सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। होगी फिर मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और चलते चलते मिलकर संकल्प लें, टीबी को हराना है, भारत को टीबी मुक्त बनाना है।

जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, यह है सेहत से ही लाभ कही। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या के बारे में। परिवार नियोजन, अक्सर परिवार नियोजन का नाम सुनते ही लोगों के मन में आता है कि इसका मतलब सिर्फ बच्चों की संख्या कम करना है, लेकिन वास्तव में परिवार नियोजन का उद्देश्य है पति पत्नी अपनी परिस्थितियों, स्वास्थ्य और भविष्य को ध्यान में रखते हुए मिलकर तय करें कि बच्चा कब होना चाहिए, बच्चों के बीच कितना अंतर रहना चाहिए और परिवार को किस तरह से बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब बच्चों के बीच उचित अंतर होगा तो माँ को अपने स्वास्थ्य को संभालने का सही समय मिलता है और परिवार को बच्चों के पोषण, टीकाकरण, पढ़ाई और देखभाल पर बेहतर ध्यान देने का अवसर भी मिलता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट एनजीओ और आज हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं परिवार नियोजन यानी जनसंख्या के कंट्रोल के बारे में, जो कि केवल महिलाओं की ही जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, परिवार, पूरा परिवार जिम्मेदार होता है पति और पत्नी के साथ साथ। इसमें आइए शुरू करते हैं।

प्रस्तुति। जी हाँ, सेहत सही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति में हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या कंट्रोल के बारे में। कहा जाता है, समझा जाता है कि ये जिम्मेदारी केवल महिलाओं की होती है। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान पत्नी की जांच में साथ जाना, उसके खान पान और आराम का ध्यान रखना, बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल में सहयोग करना और परिवार नियोजन से जुड़े फैसले आपसी सहमति से लेना, ये सब परिवार की साझा जिम्मेदारियां होती हैं। आज परिवार नियोजन के लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं, लेकिन यहां जरूरी बात याद रखने की यह है कि हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। इसीलिए किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या सोशल मीडिया की अधूरी जानकारी के आधार पर इसे चुनने के बजाय एक अच्छे डॉक्टर, ANM, आशा कार्यकर्ता या जो अन्य प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, सरकारी अस्पतालों में होते हैं, जाकर उनसे सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। इसके अलग अलग तरीके आ गए हैं परिवार नियोजन को अपनाने के लिए। आप किस तरह से इसका ध्यान रखते हैं हमें बता सकते हैं 9639012111 पर। एक और महत्वपूर्ण बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।

जी हाँ, सेहत से ही लाभ गई है ये। मैं हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ आपके अपने सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं इस खास प्रस्तुति को, जिसके प्रस्तुतकर्ता है स्मार्ट एनजीओ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन और जनसंख्या कंट्रोल के बारे में। आपको पता ही है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या जो है, यानी जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, वो जनसंख्या विस्फोट ही है। आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको भीड़ मिलेगी, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। इसका कारण है यहां पर लगातार बढ़ रही जनसंख्या। बस हो, ऑटो हो, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, मार्केट हो, कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह भीड़ नजर आती है। इसके लिए सबसे जरूरी है परिवार नियोजन का अपनाना। भीड़ को कंट्रोल करना जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। समझा जाता है कि ये जिम्मेदारी महिलाओं की हो जाती है, लेकिन सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, ये साथ ही साथ पूरे परिवार की भी होती है। दोस्तों, परिवार नियोजन से जुड़े फैसले डर, दबाव या अफवाह के आधार पर नहीं होने चाहिए। आज भी कई जगहों पर गर्भ निरोधक साधनों को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। कोई कहता है कि कोपर्टी शरीर में घूम जाती है, कोई किसी गोली या इंजेक्शन को लेकर डरा रहता है, और पुरुष नसबंदी को लेकर भी कई गलत धारणाएं मौजूद हैं। लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े किसी भी विषय में सबसे भरोसेमंद जानकारी प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी और चिकित्सीय सेवाओं से ही लेनी चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर के पास ही आपको हमेशा जाकर बात करनी चाहिए। दोस्तों, आज की चर्चा केवल परिवार नियोजन तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे युवाओं से भी जुड़ा है। युवा स्वस्थ रहेंगे, शिक्षित होंगे, उन्हें रोजगार और सही जानकारी मिलेगी और वे अपने भविष्य से जुड़े फैसले समझदारी से ले पाएंगे, तो यही युवा देश की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। किशोरों और युवाओं के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी कई सरकारी सेवाएं और कार्यक्रम भी हैं, जिनके माध्यम से पोषण, एनीमिया, मानसिक स्वास्थ्य, नशे से बचाव स्वास्थ्य, जीवन कौशल और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर जानकारी और परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। इसीलिए माता पिता और परिवार के लिए भी जरूरी है कि वे बच्चों, युवाओं और उनके सवालों को नजरअंदाज न करें। उन्हें डांटने या शर्मिंदा करने के बजाय सही जानकारी दीजिए और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्यकर्मी से सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि सही जानकारी समय पर मिल जाए तो जीवन के कई गलत फैसलों से बचा जा सकता है।

एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों, यह है सेहत से ही लाभ कई। मैं हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजादी रेडियो 90.0 FM पर। दोस्तों, जब जब विश्व जनसंख्या दिवस आता है, तब तब लोग बात करते हैं कि जनसंख्या कितनी ज्यादा हो गई है। मैं कहता हूं कि सिर्फ एक खास दिन इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए, हमें हमेशा इस बात का आभास होना चाहिए कि इस पृथ्वी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक इस धरती की लगातार बढ़ रही जनसंख्या है। सबसे जरूरी हमारे देश की जनसंख्या, क्योंकि हमारे देश में जो संसाधन है वो कम है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जरूरत है इस वक्त सही जानकारियों की और जागरूकता की, हमें इस बात का आभास होने की कि जनसंख्या कंट्रोल या नियंत्रण करना कितना ज्यादा जरूरी है। विकास केवल लोगों की संख्या से नहीं होता, विकास तब होता है जब लोग स्वस्थ हों, बच्चे सुरक्षित और पोषित हों, महिलाओं को सम्मान और स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, पुरुष परिवार की जिम्मेदारी में बराबर भागीदारी निभाए, युवाओं को अपने भविष्य के लिए सही अवसर मिले। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई है जनसंख्या से। परिवार के प्रति स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, पति पत्नी परिवार से जुड़े फैसले मिलकर साथ में लें, बच्चे और उनके बीच का उचित अंतर रखना, कितने बच्चे होने चाहिए, किसी दूसरे के प्रेशर में आकर बच्चे पैदा नहीं करने, परिवार नियोजन के बारे में सही जानकारी आपको होनी चाहिए। कोई दादी नानी, कोई मोहल्ला, कोई पड़ोसी, कोई यार रिश्तेदार बोले कि नहीं बच्चे और पैदा करो, तो ये बात ठीक नहीं है। इसका अधिकार केवल आपका है, आपको कितना ज्ञान है, आपको कितनी जरूरत है, आप कितने बच्चों का ठीक से पालन पोषण कर सकते हैं। एक बच्चे को जिसको हम जन्म देते हैं उसको एक अच्छा जीवन देने का अधिकार भी, जैसा बच्चे को अधिकार है ना एक अच्छा लाइफस्टाइल प्राप्त करने का, ये जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। हमारी वजह से कोई बच्चा अगर दुनिया में आता है तो उसको इस दुनिया की सबसे बेहतर सुविधाएं मिलना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी सामाजिक दबाव में आकर बच्चे पैदा करना एकदम गलत है, ये अधिकार केवल आपका है, चाहे बच्चे पैदा करें या ना करें, ये केवल आपका अधिकार है। और एक बच्चा हो, दो बच्चे हो, जैसे पहले कहा जाता था कि बच्चे दो ही अच्छे या शेर का बच्चा एक ही अच्छा, तो एक बच्चा या दो बच्चे, जितने भी कम बच्चे हो या जैसे भी आपका सिस्टम है, आपके परिवार का सिस्टम है, ये केवल आपका अधिकार है। साथ ही साथ आपके अधिकार में भी ये बात ध्यान रखिए कि जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिस नन्ही सी जान को आप इस दुनिया में लेकर आने वाले हैं उसको यहां पर क्या क्या मिलेगा। उसको मिलेगा यहां पर बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत सारा पोल्यूशन, बहुत सारी भीड़। तो ये सब पता होना चाहिए कि अगर हम एक बच्चा पैदा करें, दो बच्चे पैदा करें, जनसंख्या कितनी बढ़ा देंगे, क्या हम उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाएंगे। ये सारी बातों का ज्ञान होना भी हम सभी को बहुत जरूरी है। इसमें ना किसी को कभी कोई शर्म होनी चाहिए, ना कोई सामाजिक दबाव होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है ज्ञान की, हमें पता होना चाहिए कि जिस बच्चे का जन्म होगा वो कैसे संसार में आएगा, हम उसे किस स्कूल में पढ़ाएंगे, कैसा भोजन देंगे, कैसा घर देंगे, कैसा

0: वातावरण देंगे, ये सारी जिम्मेदारियां हमारी बन जाती है। दोस्तों, बच्चों और युवाओं को स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े विषयों पर सही जानकारी देने में कभी संकोच न कीजिए। परिवार नियोजन के बारे में हमेशा सबको बताइए। अपने छोटे बच्चों को भी लगातार बढ़ रही जनसंख्या के बारे में सचेत कीजिए। याद रखिए दोस्तों, स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज, और स्वस्थ समाज ही मजबूत भारत की नींव बनेगा। इसी संदेश के साथ आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सही जानकारी लीजिए और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी निर्णय सोच समझकर सही सलाह के साथ लीजिए। सेहत से ही लाभ कई में होगी फिर मुलाकात। जय हिंद, वंदे मातरम।
1: सेहत

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
5: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
0: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
6: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस, BW प्रॉपर्टी एक्सपो, आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11th अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान, स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: हेलो नमस्ते आदाब, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे वंशी। और जनाब गुड वाली मॉर्निंग है, गुड वाला प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। कुछ ऐसी गल्ला शल्ला करती हूँ जो हो जाती है आपसे ही रिलेटेड, इजंट इट। तो चलिए आज का फॉर्मूला ऑफ द डे आप तक पहुँचाती हूँ जो कुछ यूँ कहता है, सुनिएगा जरा। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियाँ बदलते हैं, जड़े नहीं जनाब। तो इसीलिए जब भी आपको लगे कि आप मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो जनाब जरा अपने एक्शंस को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और ये देखिए कि आप खामियां गलतियां कहां कर रहे हैं, कहां आपसे चूक हो रही है कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन मुकाम हासिल करना है तो जनाब सफर तो तय करना पड़ेगा, और सफर के लिए रास्ता कौन सा आपको चुनना है वो आप तय करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि आपकी जो भी डिसीजन मेकिंग है वो सही रहे और आप जीवन में हमेशा सही रास्ते पर ही चलते रहें। और इवन कभी कभी पता है क्या होता है, आप भीड़ के पीछे चलना प्रेफर करते हैं, लेकिन जनाब भीड़ आपको बेशक रास्ते तक ले जाए, लेकिन पहचान तो आपको अलग रास्ता ही देकर जाता है। तो चलिए फिलहाल मैं आपको लेकर चलूंगी इस अपकमिंग गाने की, और बाकी आपको कुछ कहना है कुछ बताना तो घुमा सकते हैं, लगा सकते हैं 9639012111 बिंदास होकर। फिलहाल अभी ये गाना आपके लिए।

0: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. दोस्तों ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ और प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आप अपने स्किन का ध्यान रख सकते हैं और उसकी केयर कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही रूटीन आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि आप रेगुलर बेसिस पर भी कर सकते हैं। असल में जब आपको लगता है कि आप की स्किन जो है बहुत ही ऑयली हो गई है या फिर आपको उसको ऑयल फ्री बनाना है, तो आप कौन कौन से तरीकों को अपना सकते हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले स्टेप होता है क्लींजिंग का। आप दिन में कम से कम दो बार सैलिसिलिक एसिड अगर इस्तेमाल करती हैं या फिर आप इसकी प्लेस पर टी ट्री ऑयल वाले फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकती हैं, और ये त्वचा के लिए इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि ये त्वचा में छिपे गहरे छिद्रों में जमे अतिरिक्त तेल को साफ कर देता है और इससे जो है आपकी स्किन ऑयल फ्री हो जाती है। वहीं बात करें अगर टोनिंग की, तो टोनिंग क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि ये बढ़े हुए पोर्स को सिकुड़ने में मदद करता है, और उनको आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपको लेना होगा अल्कोहल फ्री टोनर या फिर आप शुद्ध गुलाब जल का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे भी आपको लगेगा कि आपकी जो स्किन है, अगर आपको उस पे एक्सेस ऑयल नजर आ रहा है या फील हो रहा है या फिर चिपचिपाहट आपको लग रही है, तो ये स्टेप आपको काफी हद तक कामयाबी दे सकता है। और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगे सारी की सारी और बताऊंगी बाकी की चीजें भी, बट अभी क्या करेंगे, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा दोस्तों। और इसी के साथ आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो बिल्कुल मुझसे साझा कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है मेरा, 9639012111। आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हैं सेम ही नंबर पर। हमारे सोशल हैंडल्स पर जुड़ जाइए और अपनी सारी बातें हमसे कह डालिए। रेलेवेंट पोस्ट में आप हमें टैग भी कर सकते हैं और हमसे कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, है ना, मजे की बात। चलिए इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ अभी कोलैबोरेट करेंगे, एंजॉय करेंगे ये गाना, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा दोस्तों। ऐसे ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस बीडब्ल्यू प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो,

द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।

हेलो, मारो नाम मेयर जसमत भाई बच्चू भाई, गाम नाना पाड़ियात, तालुको जिलो बोटाद, गुजरात। आम तो अमे खूब लांबा समय थी आजाद हिंद रेडियो सांभळवे छी अने सांभळवानी खूब मजा आवे छे। अने आज वंशीबेन नी वातो खूब आनंद आपी दे तेवी होय छे। अने खास तो अमने ए वातनो आनंद थाय छे कि आज वंशीबेन नी भाषा हिंदी छे, छता थोड़ू घणु 100% नहीं पण छता थोड़ू घणु अमारी साथे गुजराती में वात करी ले छे। एमे के हालो वंशीबेन केम छे, के शू जसमत भाई मजा में छो? एटले ए वातनो अमने खूब आनंद थाय छे कि अमारी साथे आज वंशीबेन गुजराती में थोड़ू घणु बोली ले छे। અને હંમેશા આનંદમાં રહેવાની, થેન્ક યુ।

0: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
2: दोस्तों आप यही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।
3: अरे अरे अरे, रुको, क्या कर रही हो?
2: क्या कर रही हो मतलब, रात का बासी पानी फेंक कर ताज़ा पानी भर रही हूँ।
3: रात का बासी पानी?
2: जी, अब पीने के लिए तो ताज़ा पानी भरना ही पड़ेगा ना।
3: तुम्हें पता भी है, देश के ना जाने कितने हिस्सों में लोगों को ऐसा पानी नसीब नहीं होता। वो सड़ा हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर है, और तुम कहती हो बासी पानी। एक दिन में थोड़ी पानी खराब होता है।
2: तो फिर कैसे किया जाए?
3: इस पानी का जहाँ हो सके उपयोग किया जाए, और इस तरीके से फेंका या बहाया तो बिल्कुल ना जाए।
4: क्योंकि ऐसा करना पानी को उड़ेलना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य के साथ खेलना है। जल है तो कल है, पानी बचाइए, भविष्य बनाइए।
5: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।
6: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, RJ वंशी के साथ।
2: एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, और इसी के साथ बहुत सारा प्यार लेकर मैं लौटी हूँ आपके पास। मैं हूँ आपके साथ आपके आरजे वंशी, और आज आपसे बातें कर रही हूँ, अपनी सखियों से बातें कर रही हूँ कि आप किस तरीके से डेली रूटीन के चलते भी अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं। यस, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप क्लींजिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए सैलिसाइलिक एसिड वाला फेस वॉश, और या फिर आप टी ट्री ऑयल वाला फेस वॉश भी कंसीडर कर सकते हैं। ये जो भी आपके पोर्स होते हैं उनमें जमा जो डर्ट होता है या तेल होता है उसको साफ करने में काफी हेल्पफुल होता है। वहीं टोनिंग की बात करें तो टोनर बहुत ज्यादा जरूरी उन लोगों के लिए हो जाता है जिनकी स्किन पर बहुत ज्यादा उन्हें चिपचिपापन फील होता है, तो आप उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। और याद रखें कि टोनर आपका अल्कोहल फ्री हो, और साथ ही साथ अगर आप टोनर नहीं लगाना चाहते तो जो गुलाब जल होता है वो अपने आप में एक नेचुरल टोनर होता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बताऊं कि मॉइस्चराइजिंग आपको अपनी स्किन रखनी है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों की ऐसी स्किन होती है जो बहुत ज्यादा चिपचिपाहट वाली होती है। तो आपको क्या करना है, आपको त्वचा में नमी की कमी आपको नहीं होने देनी है, और अगर ऐसा होता है तो होता ये है कि आपकी स्किन में ज्यादा तेल बनने लगती है, और इसीलिए आपको जेल बेस्ड वाले या फिर वाटर बेस्ड वाले मॉइस्चराइजर को चूज करना चाहिए और उसको लगाते रहना चाहिए। बाकी और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगी सारी की सारी, बट मीनवाइल अभी एंजॉय करेंगे अपकमिंग गाना, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गर रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here.

0: में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
1: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ। प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, ढेर सारी बातें आपके साथ चल रही हैं और मैं आपको बता रही हूँ कुछ डेली होम केयर रूटीन में आप किस तरीके से अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्लींजिंग के बारे में, टोनिंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही साथ हमने बात की मॉइस्चराइजिंग के बारे में भी। लेकिन एक और चीज है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो है आपकी सनस्क्रीन। भले ही आसमान में बादल हो, सूर्य की जो हानिकारक यूवी किरणें होती हैं, वो मैं आपको बता दूं, हमेशा ही आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होती हैं। तो आपको सेहतमंद रखने के लिए, यानी कि अपनी स्किन को सेहतमंद रखने के लिए, जेल सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपकी जो स्किन है वो ऐसी चमकती रहे और उसको कोई किसी प्रकार की डैमेज ना होने पाए। इसी के साथ आपको बता दूं कि आप बहुत सारे फेस पैक्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी कई बार बातें की हैं, लेकिन फेस पैक्स हमारे पास इतने सारे हैं कि जिसके बारे में अगर मैं आपको रोजाना भी थोड़ा थोड़ा बताऊं तो वो नहीं, अभी इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं खत्म होने वाले। फिलहाल आपको बताऊंगी शहद और पपीता किस तरीके से आपकी बेजान और रूखी त्वचा के लिए अच्छा होता है। अब इसका पैक आप कैसे बना सकते हैं, आपको चाहिए 2 चम्मच मैश किया हुआ पका हुआ पपीता, क्योंकि ये आपके पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो आप बाकी जो आपका पपीता बचेगा उसको खाने के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं, वहीं ये बच्चों के पेट के लिए भी अच्छा होता है, तो उनको भी आदत डलवाइए अपने बच्चों को। और उसके बाद फेस पैक पर आइएगा, क्योंकि जनाब अंदरूनी शरीर को स्वस्थ रखना है और साथ ही साथ बाहरी शरीर को भी आपको सुंदर रखना है। तो इसीलिए आपको चाहिए 2 चम्मच मैश किया हुआ पका हुआ पपीता और 1 चम्मच शहद। अब इसे क्या करना है, आपको इसको चेहरे पर लगाकर कम से कम 20 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। पपीते के नेचुरल एंजाइम्स जो होते हैं वो आपकी डेड स्किन्स को निकाल देते हैं, हटा देते हैं, और शहद क्या करता है, आपकी स्किन को नमी देता है। वहीं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों को शहद सूट नहीं करता है, तो ये आपके ऊपर है, आपको अप्लाई करने से पहले इस चीज को देख लेना होगा, परख लेना होगा कि कहीं शहद से आपकी स्किन रिएक्ट ना कर जाए, है ना। फिलहाल चलिए, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगे सारे के सारे, बट मीन वाइल एंजॉय करेंगे ये अपकमिंग गाना, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, इसी के साथ ये गाना आप लोगों के नाम।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस बीडब्ल्यू प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: वेल वेल वेल वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूं और इसी के साथ प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार मेरे यानी आरजे वंशी के साथ। कुछ बातें आपसे करती हूं इस प्रोग्राम में जो हो जाती है संसार से रिलेटेड, तो वहीं कुछ बातें आपसे करती हूं जो होती है आपकी सेहत से रिलेटेड, वहीं कुछ बातें होती हैं जो होती हैं हमारी सखियों से, और कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स आपको बताती हूं जो आपकी लाइफ को और भी ज्यादा सिंपल और सॉर्टेड कर देता है ना। तो कुछ ऐसे ही टिप्स आपसे साझा करती हूँ। वहीं अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो बिल्कुल आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है हमारा 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। बिल्कुल लाइव आपसे बातें होती हैं, तो इस दौरान आप फरमाइशें भी कर सकते हैं किसी गाने की, और साथ ही साथ किसी गाने को आपको किसी को डेडिकेट करना है तो वो भी आप जरूर कर सकते हैं। कुछ अच्छा लिखना जानते हैं तो वो भी आप मुझसे कर सकते हैं, या फिर आपके अंदर कोई और भी कलाकार है तो इसके बारे में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, और हमें पसंद आएगा कि अगर आप अपनी कला हमसे साझा करेंगे। वहीं आपको बता दूं कि अब आपका जो रेडियो है आजाद हिंद रेडियो, वो बहुत सारे सोशल हैंडल्स पर मौजूद है, यानी कि आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और साथ ही साथ आप जा सकते हैं मेटा पर भी, जिसको आप फेसबुक के नाम से भी जाना करते हैं। वहीं आप जा सकते हैं एक्स पर, तो आप जा सकते हैं यूट्यूब पर भी। लेकिन एक और प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको दुनिया के किसी भी कोने में से मिल सकते हैं, वो है आपका प्ले स्टोर। आपको जाना होगा अपने प्ले स्टोर पर और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा, जिसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। बच्चा तलक भी इसको इंस्टॉल कर सकता है, और हमसे जुड़ जाइए और यूं ही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। फिलहाल आपको जोड़ूंगी इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्तों।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
4: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
5: हाय एवरीवन, आई एम कपिल घोरी, द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 FM। Nation first, always first.

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: यू आर लिसनिंग टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। वेल दोस्तों, बहुत सारी बातें आपसे कर रही हूँ और इसी के साथ चलिए कुछ एडवांस डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट्स के बारे में आपको बता देती हूँ। असल में आजकल क्योंकि हम इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल में रहते हैं कि हमें ना अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप सेल्फ केयर करते हैं तो वो आपका स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी भी है और आपका अधिकार भी है। इसीलिए सभी को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और अपने लिए कम से कम दिन में आधा घंटा तो जरूर निकालना चाहिए, फिर चाहे वो हमारी माताएं हो, बहनें हो या फिर हमारे भाई जन हो। इसी के साथ दोस्तों आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से अपनी स्किन को और भी ज्यादा बेहतर और अच्छे से रख सकते हैं। असल में आप बहुत सारे ट्रीटमेंट्स को प्रेफर कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है केमिकल पील्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना होता है सैलिसिलिक एसिड और साथ ही होता है ग्लाइकोलिक एसिड। इसकी मदद से त्वचा की ऊपरी जो डेड स्किन होती है, जो डेड लेयर होती है, वो उसको निकालने में हेल्पफुल होता है। और आपको बता दूं कि ये क्या करता है, ये जो आपके रोम छिद्र हो जाते हैं ना, जो बंद हो रखे होते हैं ऑलरेडी, उनको तुरंत खोलता है और मुहासों को आने से भी रोकता है। तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट जो आपकी स्किन को तंदुरुस्त रखने के लिए होता है। वहीं हाइड्राफेशियल क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन लेकिन लेकिन जनाब उसके लिए लगेंगे कुछ गाने और थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा इंतजार। चलिए इस गाने को एंजॉय करेंगे और उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, ऐसे ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मुझसे जुड़ जाइए हमारे सोशल हैंडल्स के माध्यम से और साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट नंबर यानी के 9639012111 के माध्यम से भी। फिलहाल ये गाना आपके लिए, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्तों।

मित्रों नमस्कार। आज बात करते हैं आजाद हिंद रेडियो की। आजाद हिंद रेडियो में एक आरजे हैं, आरजे वंशी, जो कि बहुत ही सुंदर आवाज और बहुत ही सुंदर नेचर की हैं। मैं रेगुलरली आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के द्वारा जुड़ा हुआ हूं। मैं शिवम ऋषिकेश से बात कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि आप भी आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के जरिए जुड़िए और प्यारी सी आवाज आरजे वंशी को सुनिए दोपहर 11 से 1 मंडे टू सैटरडे आजाद हिंद रेडियो, जिसे सुन के लगता है कि हाँ, कुछ वो पुरानी यादें से हम जुड़े हैं जो हम रेडियो से पहले जुड़ते थे। आज वही बात आजाद हिंद रेडियो के द्वारा, आरजे वंशी के द्वारा हमें उसी लगाव से मिलाती है जो लगाव हम पहले

0: हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी, द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 एफएम। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। आरजे वंशी के साथ।
1: ये है आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम।

0: नमस्कार, मेरा नाम शरद है, मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मैं आरजे वंशी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनका रेडियो प्रोग्राम आजाद हिंद रेडियो डेली सुनता हूँ। मुझे उनका कंटेंट काफ़ी पसंद है। मैं उनसे बात करता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी वाइब्स आती हैं, काफ़ी रिफ्रेशिंग फील होता है। मैं उनसे अपने थॉट्स डिस्कस करता हूँ, रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनसे बात करके, मुझे उनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है। कई बार उनसे बात करके ऐसा ही फीलिंग आती है जैसे आप अपने किसी घर के सदस्य से बात कर रहे हैं। मैं काफ़ी टाइम से उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। मैं रहने वाला मेरठ का ही हूँ। उनसे बातें करके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ आप लोग भी सुनिए उनका प्रोग्राम, उनसे जुड़िए, उनसे बात कीजिए। जब भी आपको टाइम मिले एक बार उनसे बात कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल घर वाली फीलिंग आएगी।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, आज ना ढेर सारी बातें आपसे हो रही हैं, बता रही हूँ कुछ ऐसे ट्रीटमेंट सभी आपसे जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली नेचर के हो जाते हैं। वेल, आप सुन रहे हैं सेहत सखी और संसार मेरे यानी आरजे वंशी के साथ। और अभी तक हमने बातें की आप केमिकल पील्स का भी सहारा ले सकते हैं और साथ ही साथ हाइड्रा फेशियल भी करा सकते हैं। अब ये क्या होता है और क्यों ये फायदेमंद होता है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। असल में हाइड्रोफेशियल एक डीप क्लींजिंग और हाइड्रेटिंग थेरेपी है और इसका फायदा ये हो जाता है, कई बार ना ऐसा होता है कि हमारी त्वचा पर चिपचिपी गंदगी जो है वो जमा हो जाती है और आपको जरूरत पड़ती है कि आप गहराई से अपनी स्किन को साफ करें। तो यही काम हाइड्रोफेशियल करता है, ये गहराई से आपकी त्वचा को साफ करता है और उसको ग्लोइंग बना देता है ना, कमाल की बात। वहीं बात करें अगर माइक्रो डर्माब्रेशन के बारे में, तो असल में इसके अंतर्गत क्या होता है, एक मशीन होती है जिसकी हेल्प से आपके चेहरे को धीरे से एक्सफोलिएट किया जाता है। यानी कि इसका फायदा हो जाता है कि जो भी आपके स्किन पर ब्लैक हेड्स होते हैं या फिर व्हाइट हेड्स होते हैं, ये उनको पूरी तरीके से साफ कर देता है और आपकी स्किन को चमकदार और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। वेल, इसी के साथ और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगी सारी के सारी, बट अभी हम एंजॉय करेंगे कुछ गाने और उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्तों, कुछ कहना है कुछ बताना है तो बिल्कुल मुझसे साझा कर सकते हैं। नंबर बड़ा आसान सा है मेरा 9639012111, और चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी वॉइस नोट भेज सकते हैं। फिलहाल मैं भेजूंगी आप तक ये बहुत ही प्यारा सा गाना, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेल वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूं और इसी के साथ प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार मेरे यानी आरजे वंशी के साथ। कुछ बातें आपसे करती हूं इस प्रोग्राम में जो हो जाती है संसार से रिलेटेड, तो वहीं कुछ बातें आपसे करती हूं जो होती है आपकी सेहत से रिलेटेड, वहीं कुछ बातें होती है जो होती है हमारी सखियों से, और कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स आपको बताती हूं जो आपकी लाइफ को और भी ज्यादा सिंपल और सॉर्टेड कर देता है ना। तो कुछ ऐसे ही टिप्स आपसे साझा करती हूँ। वहीं अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो बिल्कुल आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है हमारा, 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, बिल्कुल लाइव आपसे बातें होती हैं। तो इस दौरान आप फरमाइशें भी कर सकते हैं किसी गाने की, और साथ ही साथ किसी गाने को आपको किसी को डेडिकेट करना है तो वो भी आप जरूर कर सकते हैं। कुछ अच्छा लिखना जानते हैं तो वो भी आप मुझसे साझा कर सकते हैं, या फिर आपके अंदर कोई और भी कलाकार है तो इसके बारे में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, और हमें पसंद आएगा कि अगर आप अपनी कला हमसे साझा करेंगे। वहीं आपको बता दूं कि अब आपका जो रेडियो है आजाद हिंद रेडियो, वो बहुत सारे सोशल हैंडल्स पर मौजूद है, यानी कि आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और साथ ही साथ आप जा सकते हैं मेटा पर भी, जिसको आप फेसबुक के नाम से भी जाना करते हैं। वहीं आप जा सकते हैं एक्स पर, तो आप जा सकते हैं यूट्यूब पर भी। लेकिन एक और प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको दुनिया के किसी भी कोने में से मिल सकते हैं, वो है आपका प्ले स्टोर। आपको जाना होगा अपने प्ले स्टोर पर और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा, जिसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। बच्चा तलक भी इसको इंस्टॉल कर सकता है, और हमसे जुड़ जाइए और यूं ही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। फिलहाल आपको जोड़ूंगी इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्तों।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

सूर्यवंशी, आपका प्रोग्राम सच में बहुत अच्छा है। मैं कभी रेडियो नहीं सुनती थी, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनने के लिए इंस्पायर किया है, तब से मैं सुनने लगी हूँ। और सच में बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम, स्पेशली आपका, मतलब आरजे वंशी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आजाद हिंद रेडियो, कीप ग्रोइंग।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट. और दोस्तों ढेर सारी बातें कर रही हूँ आपसे. प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, मेरे यानी आरजी वंशी के साथ कुछ ऐसे टिप्स आपको बता रही हूँ जिसको अगर आप अपनाते हैं तो आपकी स्किन जो है वो काफी हद तक इम्प्रूव होने वाली है और आप रहने वाले हैं टेंशन फ्री. क्योंकि स्पेशली बात करें महिलाओं की, लड़कियों की, तो जब उनकी स्किन या फेस पर कुछ हो जाता है दाग या धब्बा से, तो इतनी ज्यादा पैनिक हो जाती है कि वो खाना पीना तक भी छोड़ देती है और हर वक्त उनका ध्यान सिर्फ उसी पर रहता है. तो अपना ध्यान इन चीजों से हटाइए और प्रोडक्टिव चीजों में जरूर लगाइए. फिलहाल कुछ कुछ टिप्स देकर आपको टेंशन फ्री करती रहूंगी, तो इसलिए सुनते रहिए ये आपका अपना वाला शो जिसका नाम है सेहत सखी और संसार. फिलहाल आपको बता दूं कि जैसे मॉनसून का मौसम होता है जब बारिश हो रखी होती है, तो कुछ ऐसे जरूरी नियम हैं जो आपको जरूर अपनाने चाहिए ताकि आपकी जो स्किन है वो किसी भी तरीके से नुकसानग्रस्त ना हो, यानी कि क्षतिग्रस्त ना हो. तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको भारी मेकअप से बचना है, क्योंकि जब भी मौसम ऐसा होता है बारिश वाला, तो उसमें लिक्विड फाउंडेशन या भारी क्रीम बेस्ड मेकअप जो है आपको उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पसीने के साथ मिक्स होकर के पोर्स को ब्लॉक कर देता है. और नो मेकअप लुक या सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी जो पोर्स हैं वो ब्लॉक होने से बच रहे. वही आपको बता दूं कि जब भी मॉनसून होती है, जब बारिश का मौसम होता है, तो फंगल इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इससे बचाव करने के लिए आप क्या करें, अगर आप बारिश में भीग जाती हैं तो तुरंत अपने चेहरे और शरीर को साफ पानी से धोएं और उसको सुखा लें. और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ज्यादा देर तक अपने शरीर को गीला ना रखें, क्योंकि गीली त्वचा जो होती है उस पर फंगस बहुत तेजी के साथ पनपती है और आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, आपको खुजली का सामना करना पड़ सकता है. वहीं आपको बता दूं कि चाय कॉफी की प्लेस पर आप दिन में 8 से 10 गिलास अगर पानी पियेंगे, या फिर आप नारियल पानी भी ऑप्ट कर सकते हैं, इसके अलावा नींबू पानी भी पी सकते हैं. इससे क्या होता है, आपके शरीर के टॉक्सिन्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं और आपकी स्किन और भी ज्यादा चमकदार और ग्लोइंग हो जाती है. वेल, और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगी सारी की सारी. लेकिन अगर आपको भी मुझसे कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं. बहुत ही आसान सा नंबर है मेरा 9639012111. मीनवाइल एंजॉय करेंगे अपकमिंग गाना और उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें. कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्तों.

0: हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषि भुटानी और मैं हूँ बॉलीवुड एक्टर और आप लोग सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम।

0: जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। द मार्स रिजॉर्ट्स। चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, मेरे यानी आरजे वंशी के साथ ढेर सारी बातें हमने की। और इसी के साथ दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगे कि क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा है तो आपको कुछ कुछ बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बारिश की जो बूंदे हैं वो आपके तन मन को भिगोती है, तो आपको बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब ये पानी आपकी गलियों और गड्ढों में रुकता है तो परेशानी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि डेंगू और मलेरिया के जो मच्छर हैं वो उसमें पनपते हैं और अपना घर बना लेते हैं। तो इस मॉनसून ये प्रण कीजिए कि आप जब भी आपको टाइम मिलता है या वीकेंड पर अपने घर के कूलर और जो गमले होते हैं उनकी जांच जरूर करें, साथ ही साथ छतों पर जाकर एक बार जरूर देखें और पानी को रुकने ना दें, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर पानी भरा रहा तो बीमारी पनप सकती है और आपको इसका जो है भरपाई करनी पड़ सकती है। वहीं आपको बता दूं कि आप बीमारियों से तभी दूर रहेंगे अगर आप इस मॉनसून पानी उबाल कर पीते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को हार्ड वाटर पीना बड़ा ही पसंद होता है, यानी कि जो पानी डायरेक्ट आपके ट्यूबवेल से आ रखा होता है वो पानी पीने में बेशक थोड़ा रिफ्रेशिंग लगता है और ज्यादा पिया भी जाता है, लेकिन अगर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और इस मॉनसून आपको किसी भी प्रकार की बीमारी को अपने पास नहीं लाना है, तो याद रखें कि आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को पानी उबाल कर दें और अपने आप को सुरक्षित रखें। वहीं और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगी सारी की सारी, लेकिन आज नहीं, अपने अगले प्रोग्राम में। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और साथ ही साथ इस मॉनसून एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम एक पौधा जरूर लगाएं और अपनी धरती माता को उससे सुशोभित करें, ताकि ये पौधा हमें ऑक्सीजन तो दे ही, साथ ही साथ जो भी हमारी बाढ़ जैसी आपदाएं होती हैं उनको भी रोकने में, थामने में हमारी मदद कर सके। फिलहाल ये गाना आपकी जरूर मदद करेगा जाते जाते जो आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। तो चलिए एंजॉय कीजिए ये गाना और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में,
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर। अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर।
2: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
3: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम, बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा एआई आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, यूजीसी नेट, जीआरएफ तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
2: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

0: जय हिंद दोस्तों, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। आज के इस कार्यक्रम का नाम है जिंदगी क्या मिलेगी दोबारा। इस कार्यक्रम की प्रेरणा हमें मिली है सुभारती विश्वविद्यालय की संघ माता स्वर्गीय डॉक्टर मुक्ति मैम के द्वारा। चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आपकी आंखों की रोशनी रहे बरकरार, आपकी आंखों की रोशनी रहे बरकरार, इसलिए आरजे वंशी आई है फिर एक बार। तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ जिंदगी क्या मिलेगी दोबारा कार्यक्रम को लेकर। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, जान है तो जहान है, और जान भी स्वस्थ खुशियों से लबरेज। आज हम जिस विषय को प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो शरीर के एक ऐसे अंग से संबंधित है जो कुदरत का एक करिश्मा है। रंग, रूप, सौंदर्य, दर्द, प्यार, अपनत्व, सब कुछ आंखों से ही तो हमको मिलता है। सच ही तो कहते हैं ना, आईज आर द चॉइसेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी आंखें एक नियामत है। तो आज हम एक ऐसे नेत्र रोग से पर्दा उठाएंगे जो है मेडिकल जगत का एक जाना माना चोर। जी हाँ, वो है काला मोतिया। काला मोतिया जिसे इंग्लिश में ग्लूकोमा कहते हैं, और सफेद मोतिया यानी के कैटरेक्ट। इसके मरीजों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है, पर आप अगर एक आई स्पेशलिस्ट से पूछेंगे कि वो सफेद मोतिया से ज्यादा घबराता है या काले मोतिया से, तो जवाब अवश्य ही काला मोतिया होगा। सफेद मोतिया तो जल्द ही पहचान में आ जाता है क्योंकि इससे आंखों की पुतली सफेद होने लगती है।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। जय हिंद।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस बीडब्ल्यू प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हार्मनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एसपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी

0: your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। ये है मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है राष्ट्र चेतना। जैसा कि आपको पता ही है, यह कार्यक्रम आधारित है राष्ट्र अनुभूति नाम की पुस्तक पर, जिसके लेखक हैं सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी। वो कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का नारा भी उन्होंने ही दिया।

ये किताब हमको सिखाती है अपने देश से प्रेम करना। दोस्तों, जैसा कि आजकल आपने खूब सुना होगा सिविक सेंस के बारे में, यानी एक नागरिक का आचरण, एक चरित्र कैसा हो, एक अच्छा नागरिक किस प्रकार का होना चाहिए। यह किताब हमको सिखाती है कि देश का निर्माण केवल मानचित्र की वक्रीय रेखाओं से नहीं होता, उसका एक चेतना लोक भी होता है जो नागरिकों, व्यवस्था संचालकों और राजनेताओं के ईमानदार प्रयासों से सक्रिय होता है। इस चेतना लोक में उस देश की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और गौरवशाली प्रसंग और इतिहास सम्मिलित होता है। भारत की मूल संस्कृति सदैव सनातन रही है। ये सनातन संस्कृति का ही प्रभाव है कि आज भारत में संपूर्ण विश्व के सभी मतों को मानने वाले लोग पूरे मान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह संस्कृति सर्वग्राह्य संस्कृति है जो मानव और मानव के मध्य की भेदक रेखा को समाप्त करती है। जहाँ जहाँ इस संस्कृति का नुकसान हुआ है, वहाँ वहाँ सामाजिक स्थिति बद से बदतर हुई है। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान इसके उदाहरण रहे हैं। वर्तमान में बांग्लादेश सजीव उदाहरण है। यदि हम सुख शांति से जीना चाहते हैं एवं विकास करना चाहते हैं तो सनातन को बचाने की आवश्यकता है। सनातन संस्कृति अथवा धर्म है क्या? सनातन किसी पूजा पद्धति या कर्मकांड अथवा पारलौकिक मान्यताओं के मकड़ जाल में उलझी कोई व्यवस्था नहीं। सनातन वे भाव हैं जो सृष्टि की रचना के साथ आए एवं जब सृष्टि रहेगी तब तक उन्हीं भावों के आधार पर रहेगी। वे भाव है प्रेम, करुणा, मैत्री और समानता। सनातन धर्म वो धर्म है जिसमें उपयुक्त सभी भाव हों। धर्म तो केवल सनातन ही है, बाकी सभी कहे जाने वाले कथित धर्म तो केवल संप्रदाय या मत ही हो सकते हैं। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था गणतांत्रिक है। गणतंत्र के चार स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं सूचना संचार प्रणाली, जिसे हम सुविधा के लिए सम्मिलित रूप से मीडिया भी कह देते हैं। इन सभी संस्थाओं की कार्यशैली वर्तमान में परिष्करण अथवा आमूलचूल सुधार चाहती है। दूसरी ओर वर्तमान में आम जनता जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के दलदल में फंसी हुई है, निकलना ही नहीं चाहती। देश के विषय में सोचने का इनके पास ना तो समय है और ना ही इच्छा। चीन में वर्तमान सत्ता हमारी कथित स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुई। आज चीन एक विश्व की शक्ति बन चुका है और हम अपनी पहचान एवं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी देश प्रेमियों को इससे चिंतित होना चाहिए और इस समस्या के समाधान की खोज करनी चाहिए। अपनी सामान्य बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सभी समस्याओं का मूल कारण ये है कि हमें अपने देश का ना तो सही इतिहास बताया गया और ना ही इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि हम ये समझें कि हमारी सोच सबसे पहले देश के प्रति होनी चाहिए, बाकी जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र तो बाद में आते हैं। हमारा मूल मंत्र राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम होना चाहिए था, जो कि नहीं है। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं राष्ट्र चेतना कार्यक्रम, जो आधारित है सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी की लिखी पुस्तक राष्ट्र अनुभूति पर।
इसी पुस्तक से जो अंश मैंने अभी आपको सुनाया, जो मैं समझता हूँ इस पुस्तक से कि सर्वप्रथम हमें अपने देश के प्रति सचेत होना चाहिए, अपने देश के बारे में सर्वप्रथम हमको सोचना चाहिए। पुस्तक के लेखक हमको ये समझाना चाहते हैं कि देश सबसे पहले होता है। हम जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं और जो भी कार्य करते हैं, हमें सबसे पहले अपनी मिट्टी, अपनी मातृभूमि, अपने देश के प्रति सोचना होगा। चाहे आप ठेला लगाते हो, आप मजदूर हो, आप डॉक्टर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप छोटे से छोटा कोई कार्य या बड़े से बड़े कोई धुरंधर कार्य भी करते हो, तब भी सर्वप्रथम आपका ये कर्तव्य, आपका ये धर्म बनता है कि सबसे पहले हमें हमारे देश के बारे में सोचना चाहिए। इस पुस्तक के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ये प्रयास कर रहे हैं समझाने के लिए कि अपने देश के भावी कर्मचारियों को अपने देश का सही इतिहास बताया जाए, उन मूलभूत विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए जो व्यक्ति के चरित्र एवं राष्ट्रीय चरित्र के लिए आवश्यक हैं। बस यही एक उपाय है। पुस्तक के माध्यम से लेखक हमको समझाना चाहते हैं कि हमारे युवा हमारे देश के विषय में सोचें, उनमें राष्ट्रीय चरित्र विकसित हो, कि देश को ऐसी युवा पीढ़ी मिले जो राष्ट्रीय भाव को सुरक्षित और संरक्षित रखते हुए देश के नव निर्माण में सहयोगी हो। किसी भी समाज का निर्माण चरित्रवान नागरिकों से होता है। चरित्र की परिभाषा बहुत ही व्यापक है, उसमें नैतिकता के साथ राष्ट्रबोध एवं राष्ट्र शोध भी सम्मिलित होते हैं। इसी भाव से इस कार्यक्रम को भी बनाया गया है। इस कार्यक्रम का आधार है राष्ट्र अनुभूति। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। सुभारती आजाद हिंद रेडियो की इस खास पहल में आप भी जुड़िए और आपके विचार शेयर कर सकते हैं 9639012111 पर। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस बीडब्ल्यू प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11th अक्टूबर एट हारमनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज

0: Subharti Cancer Hospital. To know more, call now 9639010313. सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। To know more, call now 9639010313.
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

कहने लग गया भाई उसने मेरे प्रति बहुत हमदर्दी करी, मेरे को टाइम दिया समय के अनुसार वो आई, मैंने उसका बहुत धन्यवाद किया, बड़ा उसका शुक्रगुजार हूँ।

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्ण।

जमीन सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान, जहां मिले

0: नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं सुभारती आजादी रेडियो 90.0 एफएम। मैं हूं वास्तु कृष्णा और यह है आपका अपना कार्यक्रम जय जवान जय किसान। और इस कार्यक्रम में बातें होती है खेती और किसानी की, हमारे किसान भाइयों को किस तरह से एडवांस हो जाना चाहिए। एआई का जमाना है और एआई के जमाने में आज की डेट में अगर किसान भाइयों आप एआई का यूज भी करना सीख जाते हैं अपनी खेती में, तो आपको ज्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपके एरिया में आपके खेत की मिट्टी कैसी है, आपकी फसलों में कौन सी बीमारी लगी हुई है, किन दवाइयों का इस्तेमाल आपको करना है, किन परिस्थितियों में कितना खाद आपको डालना चाहिए, ये सारी जानकारी आज आपको इंटरनेट पर बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकती है। दूसरे किसानों की देखा देखी ही नहीं, अब आप खुद से स्टडी करके या नए जमाने की तकनीक को इस्तेमाल करके आपको अपने खेत में किन चीजों का इस्तेमाल करना है क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान आप ले सकते हैं, तो आप कम बजट में बेहतर फसल पैदा कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं सरसों की खेत की, यानी कि सरसों की बुआई के बारे में, कैसे आप इससे ज्यादा लाभ ले सकते हैं।
1: और ये बात की समय की

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा के

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: नबली हो मेरे कहते जा करवाने।

सुबह उठ के ताता पानी तन कर के कौन नहावेगा। आठ बजे सी बना रसोई तने भोजन कौन खवावेगा। सेवा करके मुट्ठी भर के

मलाई ज्यादा गरम कर्या जासे। श्याम हुई जब ठीक बखत पे मटकी बीच भरया जासे। दही बेलो के मक्खन काट ले फिर खाली।

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तपकर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान,
1: मेरे देश की धरती।
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्ण।

आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत करता हूं सुबह भारती आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूं वास्तु कृष्णा। दोस्तों, आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सरसों की फसल के बारे में। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तो मिट्टी भुरभुरी होती है, उतनी चिकनी मिट्टी भी नहीं होती है, और इस मिट्टी में सरसों की फसल बहुत अच्छी होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रट के आसपास के क्षेत्रों में, गांव कस्बे देहात में अगर देखा जाए तो गन्ना बेल्ट के नाम से मशहूर होती है। गन्ना सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है किसान भाइयों के द्वारा। लेकिन इस समय पर, अक्टूबर इस टाइम पर, अगर आप सरसों बोते हैं तो आप तकरीबन 3 से 3.5 महीने बाद सरसों की कटाई कर लेंगे और फिर आप अगेती गन्ने की फसल बोलेंगे। इससे आपको डबल मुनाफा होगा। पहली बात तो यह कि सरसों के प्राइस बहुत हाई रहते हैं आजकल, और सरसों के जो रेट हैं, सरसों सब खरीदना चाहते हैं, सरसों कम होती है, इसीलिए अच्छे खासे रेट मिल जाते हैं। तो इस मौके का आपको लाभ उठाना चाहिए, इसलिए सरसों बोइए। दूसरी बात ये दोस्तों के सरसों की बुआई के लिए हमारे आसपास की जो मिट्टी है मेरठ के क्षेत्र की, वो अच्छी है, यहाँ पर उपज अच्छी हो सकती है। खेत की तैयारी की अगर बात करें तो सबसे पहले अपने खेत को अच्छी तरह से जुतवा लीजिए। उसमें हैरो, टीलर, मांझा जो आपने लगवाना वो लगवाइए। खेत के अंदर ज्यादा जो गन्ने की जड़े होती है या ज्वार बाजरे की जड़े होती है वो दिखनी नहीं चाहिए। उसके बाद एक बार रोटावेटर उसमें जरूर लगवाना चाहिए। और जो सरसों का बीज का चुनाव आप करते हैं वो एकदम उपचारित और अच्छी क्वालिटी का हाइब्रिड बीज होना चाहिए, तभी आपकी फसल की शुरुआत अच्छी होती है।
1: Yeah!

और आखिरी कली में लेखन होते ने बहुत सोच विचार करके सोची कली में इन गाउनियों के बारे में।

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तपकर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा के

आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

जमीन सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान, जहां मिलेगी खेती की नई तरकीबें, सही दाम और संघर्षों से जीतने की कहानियां। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ। जय हिंद।

0: पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी

जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: किसान भाइयों नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपकी पसंद की रागनी और देसी गाने यहां पर चलते हैं। कोई भी देसी गाना आप अगर सुनना चाहते हैं तो मैं यहां पर चलाऊंगा। हमारा नंबर है 9639012111। और आज के कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं सरसों की फसल के बारे में। तो दोस्तों, सरसों की फसल हमेशा ही लाभकारी रहेगी। देखिए, तो इसके रेट कभी कम नहीं होते। और अगेती आप सरसों बो देते हैं तो अगेती फिर आप खेत को खाली करने के बाद गन्ने की फसल बो सकते हैं, इससे आपको ज्यादा लाभ होगा। अगर अब आप सरसों बोना चाहते हैं, सबसे पहले चुनाव करना है एक अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कंपनी के बीज का। हाइब्रिड बीज लेना है। मार्केट के अंदर आपको 600-700 रुपए किलो से लेकर 1200-1500 रुपए किलो तक के बीज आराम से देखने के लिए मिलते हैं। अपनी बजट के हिसाब से, अपने बजट को देखते हुए कौन सा बीज कितनी ज्यादा अच्छी उपज देकर जाता है, उस हिसाब से आप ये बीज खरीद कर लेकर आ सकते हैं। बीज उपचारित होने के बाद ही आपको मिलता है, तो पहला फायदा ये हो जाता है। खेत की जुताई बहुत अच्छी तरीके से कर लेनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो नमी अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि जो सरसों के खेत में पहली सिंचाई जो होती है तकरीबन एक महीने के बाद होती है। यानी खेत में इतनी नमी होनी चाहिए कि एक महीने तक फसल हमारी सूखनी नहीं चाहिए। सरसों में ज्यादा पानी नहीं होता है, सिर्फ एक ही सिंचाई होती है, वो भी तकरीबन एक महीने के बाद। अगर बारिश हुई है हाल फिलहाल में आपके एरिया में, तो नमी अगर पर्याप्त मात्रा में है तो सिंचाई करने की या पलेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसीलिए मिट्टी का चुनाव, खेत का चुनाव, खेत की जुताई और नमी कितनी है, कितना यूरिया डालना है, कितनी डीएपी यानी डाई डालनी है, और बीज किस मात्रा में डालना है। और अगर आपके खेत में उपजाऊ क्षमता कमजोर पड़ गई है तो उसमें कूड़ी का खाद भी हम डाल सकते हैं, नहीं तो उसके भी आजकल काफी सारे ऑप्शन आ चुके हैं, आप वो भी प्रोडक्ट लाकर डालेंगे तो आपको लाभ होना तय है। फिर दोस्तों,
1: और पीस रोता हूं ये बात की समय की, कॉलेज की लड़की एक लड़के से नजर लड़ जाती है,

हेर आख्यम स्याही और नजर को डाली वही मार गई यकी हेर का

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा के

नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। जय जवान जय किसान कार्यक्रम में आज हम सरसों की फसल की बात कर रहे हैं। दोस्तों, सरसों की बुआई का टाइम बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। आप बो सकते हैं, आप अच्छे से खेत को जुतवा लीजिए, भुरभुरी मिट्टी हो जानी चाहिए। जितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी आपके खेत की हो जाएगी, उतना ही बढ़िया आपकी फसल होगी सरसों की। तो आप इस काम को जरूर करें। जब सरसों की बुआई हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद, 15 से 20 दिन के बाद या 25 दिन बाद, आप खेत में निराई गुड़ाई का काम शुरू कर सकते हैं। देखिए, सरसों के खेत में खरपतवार बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप उन खरपतवारों को जरूर हटाएं। सरसों के खेत में निराई गुड़ाई करना बहुत अच्छा होता है और आसान भी होता है। अच्छी किस्म को आपको अपनाना है, बीज अच्छा लेना है, अच्छे से निराई गुड़ाई करनी है। फिर तकरीबन 1 महीने के बाद या 40 दिन के बाद लगभग तो आप पहला पानी दे सकते हैं। उसके बाद जब पर्याप्त नमी रहेगी, आपकी 1.5-2 महीने बाद फिर फसल पककर तैयार हो जाती है। तो 3 से 3.5 महीने की ये फसल होती है और आप अच्छी तरीके से जो है फसल को फिर काटने के बाद बेच सकते हैं। लेकिन बीच में जो ध्यान रखने वाली बात आती है, वो सरसों में भी कुछ बीमारियां लग जाती हैं, जैसे माहू एक कीट होता है, ये सरसों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। सरसों में माहू यानी कि एफिड का प्रकोप फूल पर होता है, फलियों पर भी होता है। यानी कि जब फूल आता है और फलियां बननी शुरू होती है, उस दौरान ही हमला करता है। तो इसकी आपको जो है कोई स्प्रे भी जरूर करनी चाहिए, ये तब की बात है। तो ये कुछ तैयारियां हैं, कुछ बातें हैं जिनका हमको सरसों की फसल के दौरान ध्यान रखना है। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम।

0: ओ मेरी सासू की, भर लाई पानी।
1: आज कहीं ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो और ना की हो? ए सेठानी, नीर बरन चलेगी आज? ना जाऊंगा ना, गई तो पूरी बन ठन कर जाऊंगी।
0: तेरे के नुजान में बिजली पड़े है, तू किनारिये जागी, नुए चली जा।

जी हाँ, यह है मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं जय जवान जय किसान कार्यक्रम। खेती किसानी का कार्यक्रम है दोस्तों। रागनी और देसी गाने हम यहाँ पर आपके लिए चलाते ही है, तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है जरूर बताया करें। अपनी पसंद की रागनी और देसी गाने भी आप सुन सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सरसों की फसल और इससे होने वाले लाभ के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप सरसों बोते हैं तो इसका लाभ तो आपको जाहिर सी बात है होने ही वाला है। सरसों की कीमत हमेशा अच्छी होती है। कीमत कितनी भी अच्छी हो, सरसों की पैदावार भी अच्छी होनी चाहिए। सरसों की पैदावार या किसी भी फसल की पैदावार तब अच्छी होती है जब हम अच्छी क्वालिटी का बीज इस्तेमाल करते हैं। खाद और सल्फर का सही इस्तेमाल आपको करना है। अपने खेत की मिट्टी आपको पहली बात तो ये कि परीक्षण जरूर करवाना चाहिए कि आपकी मिट्टी में किन चीजों की, किन पोषक तत्वों की कमी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर, ये सब आपको अपने खेत में डालना चाहिए। और इन्हें डालने के साथ ही एक अच्छी क्वालिटी का बीज जब आप डालते हैं तो फसल अच्छी होनी तय हो जाती है दोस्तों। यूरिया कितना डालना है, डाई कितनी डालनी है, अपने खेत के हिसाब से आपको जिन जगहों से, जिन दुकानों से आप बीज लेकर आते हैं वो भी बता देते हैं। और आजकल AI का जमाना है, आप इंटरनेट से भी पूछ सकते हैं, वहां पर भी आपके खेत में कौन सा बीज ठीक रहेगा, कौन सी क्वालिटी का बीज लेकर आना है, किस वैरायटी का, सब कुछ आपको इंटरनेट पे जानकारी मिल जाती है। और नहीं तो अगर फिर भी अगर आप कोई एक्सपर्ट सलाह चाहते हैं तो आप हमारे नंबर को ट्राई कर सकते हैं 9639012111। ये है मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

दोस्तों सरसों के खेत की बात कर रहे हैं, सरसों की फसल की बात कर रहे हैं। मैं हूं वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। देखिए किसान भाई का कार्यक्रम है, हम चाहते हैं कि सभी किसान भाई एक बेहतर फसल को लेकर चले, अच्छी पैदावार लें। टाइम से पहले ही सजग हो जाना चाहिए, इस बार कौन सी फसल बोनी है, कब जुताई होनी है, सब चीजों को थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे तो किसान भाइयों की जिंदगी आसान हो जाती है। आज हमने सरसों की चर्चा की है तो सरसों की फसल फायदेमंद होती है। सरसों की कटाई करने के बाद आप गन्ने की अगेती फसल ले सकते हैं, तो यहां पर आपको एडवांस में ये फायदा मिल जाता है। कौन सा बीज बोएंगे ये पहले से तय रख लेना चाहिए, पहले सोच के रख लेना चाहिए। हर किसान भाई के खेत की स्थिति अलग होती है। अगर पिछले कुछ टाइम से आपकी पैदावार, आपकी फसलों की पैदावार गिर रही है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कुछ पोषक तत्वों की कमी है। क्या पिछले लंबे टाइम से आपने अपने खेत में कूड़ी का खाद यानी गोबर वाली खाद नहीं डाली है, या कैंचुए वाली खाद नहीं डाली है, डीएपी डाई यूरिया क्या नहीं डाला है, उसी हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे आसान तरीका तो अपने खेत की मिट्टी की जांच आपको करवा लेनी चाहिए, उससे पता चल जाता है कि आपके खेत को किन चीजों की जरूरत होती है। तो वैसे भी आपको नॉर्मली भी पता होता है, हमारा खेत है तो हमें पता ही होता है कि हमने कब क्या डाला है, तो किन चीजों की कमी है हमें पता चल जाता है। और दूसरों की देखा देखी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, बजट को नहीं बढ़ाना चाहिए कि लागत बहुत ज्यादा नहीं लगानी चाहिए। बस जब जिस चीज की जरूरत है, जिन पोषक तत्वों की जरूरत है, वही हमें अपने खेतों में डालनी चाहिए।

नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जय हिंद वंदे मातरम सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आप सुन रहे हैं, मैं हूं वास्तु कृष्णा और यह है कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति।

0: सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई वस्तु कृष्णा के साथ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।
1: जी हाँ, यह है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। सेहत सही लाभ कई में आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की। ये नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से चुलबुले बच्चे, ये क्यूटी पाई आपके, जिन्हें आप कभी लड्डू कहते हैं, कभी गोपाल कहते हैं, तो कभी चीकू भी कहकर पुकारते होंगे, है ना। उस नन्ही सी जिंदगी की जो जन्म लेते ही हमारी पूरी दुनिया बदल लेता है, उसी की बात करेंगे आज हम। दोस्तों, एक बच्चा जब पैदा होता है तो परिवार में खुशियां आती हैं, लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी शुरू होती है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि बच्चा कितना बड़ा हो रहा है, सवाल यह है क्या बच्चा स्वस्थ बढ़ रहा है, क्या उसका दिमाग सही तरीके से विकसित हो पा रहा है, क्या उसे पर्याप्त पोषण मिल पा रहा है, क्या उसकी आंखें और कान ठीक हैं, क्या उसका शरीर मजबूत हो रहा है, क्या वो अपनी उम्र के हिसाब से सीख और समझ रहा है, और क्या उसकी मां भी स्वस्थ है। क्योंकि याद रखिए, स्वस्थ बच्चा बनाने की शुरुआत मां के स्वास्थ्य से होती है। तो आइए आज जन्म से लेकर लगभग 10 साल की उम्र तक के बच्चे के स्वास्थ्य की पूरी यात्रा को आसान भाषा में समझते हैं सेहत सही लाभ कई में।
2: सेहत सही

गदम आपका एक बार फिर से सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और यह है सेहत सही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति। दोस्तों, क्या बच्चा स्वस्थ बढ़ रहा है? क्या उसका दिमाग सही तरीके से विकसित हो पा रहा है? पोषण मिल रहा है? आंख, कान, पैर, हाथ सब ठीक है, मजबूत है? क्या अपनी उम्र के हिसाब से बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है? ये सब जिम्मेदारियां एक पूरे परिवार की होती है ठीक समय पर पता करना। साथ ही साथ ये भी कि उसकी माँ भी क्या स्वस्थ है भी या नहीं। बच्चे के जन्म के समय की बात करते हैं। सबसे पहले जन्म के तुरंत बाद के जो टाइम होते हैं, जो दिन होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नवजात बच्चे को जन्म के बाद गर्म रखना, माँ और बच्चे का जो त्वचा से त्वचा का संपर्क है वो बनाना, जल्दी स्तनपान शुरू कराना, संक्रमण से बचाव और बच्चे की सांस और सामान्य स्थिति पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है। WHO नवजात की आवश्यक देखभाल में इन बातों को महत्वपूर्ण मानता है। इसीलिए बच्चे के जन्म के बाद केवल घर ले आना ही पर्याप्त नहीं होता, माँ और बच्चे दोनों की प्रसव के बाद जांच और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। फॉलोअप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात आती है माँ के दूध की। दोस्तों, बच्चे के जीवन के शुरुआती महीनों में माँ का दूध उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोषण होता है। WHO और यूनिसेफ की सिफारिश है कि बच्चे को जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराया जाए और पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। 6 महीने के बाद सुरक्षित और पर्याप्त पूरक आहार शुरू किया जा सकता है और स्तनपान 2 साल या उससे अधिक समय तक जारी रखा जा सकता है। इसीलिए नवजात को बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना आवश्यक जांच पड़ताल के पानी, शहद या दूसरी चीजें मत चटाइए। इस तरह की परंपराओं से बचना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चा घर पर पहली बार आता है तो मोहल्ले के कुछ लोग आकर ऐसी बातें बता देते हैं कि बच्चे को ये चटा दो, वो खिला दो। ऐसे चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, डॉक्टर की ही सलाह माननी चाहिए। और हाँ, अगर माँ को स्तनपान कराने में परेशानी हो रही है, बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पा रहा है या बच्चा बार बार उल्टी करता है तो स्वास्थ्य कर्मी से या अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले। अब बात करेंगे हम माँ की। हम अक्सर बच्चे की चिंता में माँ को भूल बैठते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद माँ के शरीर को आराम भी चाहिए, पौष्टिक भोजन भी, पर्याप्त पानी, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। माँ को लगातार अत्यधिक कमजोरी हो, बहुत ज्यादा रक्त स्राव हो, तेज बुखार हो, सांस लेने में परेशानी हो, बहुत तेज सिर दर्द या दूसरी कोई गंभीर समस्या नजर आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और एक बात बहुत ज्यादा जरूरी, माँ का मानसिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य का हिस्सा होता है। दोस्तों, बच्चे के जन्म के बाद थकान और भावनात्मक बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अगर माँ लंबे समय तक बहुत उदास रहे, किसी काम में मन न लगे, अत्यधिक चिंता रहे या खुद को या बच्चे को नुकसान पहुंचाने जैसे विचार आए तो इसे छिपाना नहीं चाहिए। परिवार को उसका साथ देना चाहिए और स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। WHO भी प्रसव के बाद माँ और परिवार को जानकारी, सहयोग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता देने के महत्व पर जोर देता है। अब ये जिम्मेदारी परिवार की भी बनती है कि जन्म के बाद सिर्फ बच्चे के चक्कर में नहीं लगे रहना, उसकी माँ का भी विशेष ध्यान रखना। मानसिक बदलाव भी होंगे, स्ट्रेस भी हो सकता है, एक माँ को तनाव भी हो सकता है, कई बीमारियां भी घर कर सकती हैं, तो माँ का भी उतना ही ध्यान रखना जितना बच्चे का रखना है।

0: आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई वस्तु कृष्णा के साथ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो पर।
1: जी हाँ, सेहत सही लाभ कई में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। यह है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। हम बात कर रहे हैं एक बच्चे के जन्म से लेकर तकरीबन 9-10 साल की उम्र होने तक उसका ध्यान किस प्रकार रखें, और बच्चे का ध्यान रखने के साथ साथ सबसे जरूरी हो जाता है माँ के सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये तो आपको पता ही होता है। अब नवजात बच्चे में किन किन बातों पर नजर हमको रखनी है इसकी बात करते हैं। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा, बहुत ज्यादा सुस्त है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, बहुत तेज या असामान्य सांसें चल रही हैं, शरीर बहुत ठंडा या बहुत गर्म लग रहा है, बार बार उल्टी हो रही है, दौरे पड़ रहे हैं, या बच्चे का रंग असामान्य रूप से पीला या नीला दिखा

0: परिवार में चलता है पौष्टिक खाद्य पदार्थ और परिवार की जो स्थानीय या पौष्टिक चीजें होती है, ऐसा होता ना कि हर किसी के परिवार में अलग खान पान चलता है या हर स्थान पर हर जगहों पर अलग अलग चीजें होती हैं। ध्यान रखिए, परिवार में एक तरह का भोजन बनता है, लेकिन एक परिवार में नवजात बच्चा भी है, नौजवान भी है, बूढ़े भी है, सबका भोजन एक नहीं हो सकता। बड़े बुजुर्गों की पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं रहती, उनका भोजन अलग होना चाहिए, नौजवानों का अलग होना चाहिए, किशोरों का अलग होना चाहिए और नवजात शिशुओं का, बच्चों का अलग भोजन होना ही चाहिए। ये नहीं है कि आज आपने अपने घर में कुछ बना दिया तो बच्चे को भी, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को भी वही चटाते रहे, जी नहीं। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है कि छोटे नवजात बच्चों को आपको क्या खिलाना है। उसके शरीर और दिमाग के विकास के लिए पोषण देना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवार की स्थानीय जो भी चीजें हैं, पौष्टिक चीजें हैं जो आप खाते हैं अपने घरों में, वो खिलाएं, उसी में से ढूंढ लें कि बच्चे के लिए क्या जरूरी है। बच्चे को सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं देना है, उसका पोषण का ध्यान रखना है। अब आती है एनीमिया यानी खून की कमी की बात। बच्चों में आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। बच्चा जल्दी थक जाए, कमजोर दिखाई दे, खेलने में रुचि न दिखाए, उसकी त्वचा या आंखों के अंदर का हिस्सा ज्यादा पीला दिखाई दे या उसका विकास अपेक्षित गति से न हो रहा हो, तो स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। याद रखिए दोस्तों, बिना जांच या डॉक्टर की सलाह के बच्चे को आयरन की दवा खुद से नहीं देनी है। जरूरत के अनुसार डॉक्टर जांच और उपचार तय करेंगे, उसके बाद ही कोई दवाई खिलाई जाएगी। अब बात सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की भी है। दोस्तों, बच्चे का स्वस्थ विकास केवल वजन बढ़ने का नहीं होता है। बच्चा कब बैठता है, कब चलता है, कब बोलना शुरू करता है, अपनी बात कैसे समझाता है, दूसरों से कैसे जुड़ता है, कैसे खेलता है, कैसे चीजों को समझता है, ये सब उसके विकास का हिस्सा है। हर बच्चे के विकास की गति थोड़ी अलग होती है, इसीलिए कंपेयर मत कीजिएगा कि फला बच्चा तो, उनका बच्चा तो बहुत जल्दी बोलना शुरू हो गया, बहुत जल्दी खड़ा होना शुरू हो गया, या वो ऐसे करता है वैसे करता है। हर बच्चा बिल्कुल अलग है, तो किसी से कंपेयर मत कीजिए। लेकिन अगर बच्चा अपनी उम्र के अनुसार लगातार पीछे ही खिसक रहा हो या पहले से आती कोई क्षमता खो रहा हो, तो उसे इस बात को नजरअंदाज नहीं करना है। समय पर जांच और शुरुआती सहायता बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। WHO के अनुसार शुरुआती वर्षों में बच्चे को अच्छा पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण, प्यार, देखभाल और सीखने के अवसर मिलना उसके विकास की बुनियाद होते हैं। इसीलिए बच्चे को सिर्फ मोबाइल पकड़ा देना सीखना नहीं होता दोस्तों, उससे बात कीजिए, उसकी कहानी सुनिए, वो बहुत कुछ आपको बताना चाहता है, वो सब सुनिए, उसकी बातों को सुनिए और फिर उसे कुछ कहानियां सुनाइए, उसे अपनी बातें बताइए, उसके साथ बातें कीजिए, उसके सवालों का जवाब दीजिए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ चित्र भी बनाइए, अगर वो कोई मस्ती करता है तो अपने बच्चों के साथ मस्ती भी कीजिए, गाने उसको सुनाइए, कविता सुनाइए, लोरी सुनाइए, और हाँ, अगर वो कुछ आपको सुनाना चाहता है तो सुनिए भी, और उसे सुरक्षित वातावरण में चीजें खोजने और सीखने का मौका दीजिए। बच्चे का दिमाग सिर्फ किताबों से नहीं, बातचीत और अनुभव से भी विकसित होता है। अब 2 से 5 साल की उम्र जब बच्चे की हो जाती है, इस उम्र में बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं। इस समय पोषण के साथ साथ नींद, शारीरिक गतिविधि, खेल, भाषा और सामाजिक व्यवहार पर भी ध्यान देना शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा किसी चीज की जिद कर रहा है तो आपने उसको मोबाइल पकड़ा दिया, सारा दिन वो मोबाइल ही देखता रहे, ये जितने कार्टून और जो बच्चों की वीडियोज होती है वही देखता रहे, उससे दूर रखना है। बच्चे को खेलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, अगर जरूरत पड़े आप खुद उसके साथ खेलिए, उसके खेलने के सामान लेकर आइए, बहुत ज्यादा मोबाइल मत देखने दीजिए, बच्चे को हर समय मोबाइल या टीवी के सामने मत बैठने दीजिए, इसके बजाय उसे उसके साथ खेलिए, उसके साथ बातचीत कीजिए, उसको कहानियां सुनाइए, परिवार के साथ खेलने का मौका दीजिए, दूसरे बच्चों को साथ खेलने का मौका दीजिए, हाथ धोने की आदत डालिए, साफ पानी पिलाने की आदत डालिए, साफ और सुरक्षित खाना कैसे खाना है ये उसको बताइए, शौचालय कैसे यूज करना है, हाथों को कैसे धोना है ये सब उसको सिखाइए, और हाँ, टीकाकरण का रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रखिए, टीके की कोई खुराक छूट तो नहीं गई है, स्वास्थ्य कर्मी से पूछकर आगे की पूरी योजना तय करिए।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई वस्तु कृष्णा के साथ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।

स्तुति। जी हाँ, यह सेहत से ही लाभ गई सिर्फ आपके अपने सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज हमने बात की है यहाँ पर कि अपने नवजात बच्चों का ध्यान कैसे रखना चाहिए, तकरीबन पैदा होने से लेकर 9-10 साल की उम्र तक कैसे कैसे हमको अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके भी कोई विचार है तो हमारा नंबर है 9639012111 पर, इस पर अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके कुछ भेज सकते हैं, हमें बता सकते हैं। ये खास प्रस्तुति है स्मार्ट NGO की।

ऐसे ही प्यार से, जैसे ये गाना भी आपने सुना, ऐसे ही प्यार से अपने बच्चों से बात कीजिए। दोस्तों हमने बात की पैदा होने से लेकर तकरीबन 5 साल तक हमारे बच्चों के साथ हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। अब बात करते हैं 5 साल से 10 साल तक के बच्चों का ध्यान कैसे हमको रखना है। दोस्तों ये वो उम्र है जब माता पिता को सिर्फ पढ़ाई के नंबर नहीं देखने चाहिए। बच्चा स्कूल में कैसा महसूस करता है, उसकी नजर साफ है या नहीं, उसे सुनने में कोई परेशानी तो नहीं, वो बार बार सिर दर्द की शिकायत तो नहीं करता, अपनी क्लास में ध्यान लगाने में लगातार कठिनाई तो नहीं हो रही, बच्चा बहुत जल्दी थक तो नहीं जा रहा, बार बार बीमार तो नहीं पड़ता, उसका वजन और लंबाई उसकी उम्र के अनुसार लगातार बढ़ रहे हैं या नहीं, और सबसे जरूरी क्या बच्चा खुश है। अगर बच्चा लगातार चुप रहता है, डरता है, स्कूल जाने से बचता है, अचानक पढ़ाई में गिरावट आती है, व्यवहार में बड़ा बदलाव दिखाई देता है, तो केवल डांटने के बजाय उससे बात कीजिए और जरूरत पड़ने पर उसके टीचर से या डॉक्टर से भी मदद लीजिए। और सबसे खास बात दोस्तों हमारी बेटियों के बारे में, बेटा हो या बेटी वैसे बात बराबर होती है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बेटियां थोड़ी नाजुक होती है, मतलब वो थोड़ी कोमल स्वभाव की होती है, वो जल्दी डर जाती है, उन्हें कम डांटिए। बेटियां बड़ी कोमल होती है तो उनको समझाइए, प्यार से बात कीजिए और उससे बात करेंगे जितना ज्यादा उसके स्कूल में क्या हुआ, उसके दोस्त या सहेलियां कौन है, क्या उसकी पढ़ाई में चल रहा है। खास तौर से हमारी बच्चियां अपने मोबाइल में क्या देख रही है ये माता पिता को पता होना चाहिए, पता तो लड़कों का भी होना चाहिए, दोनों का ही बराबर मात्रा में ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा अगर एफर्ट आपको करने पड़े तो कीजिए, बच्चों से पीछा छुड़ाने की कोशिश मत कीजिए कि बच्चे को स्कूल भेज दिया आप छुट्टी, ऐसा नहीं। बच्चा जब गाड़ी से उतरे ना, स्कूल से वापस आए, तुरंत उसके गले मिलिए, उसको ये एहसास कराइए कि आप उसका इंतजार कर रहे थे, घर पर उसका इंतजार होता है, उसको बहुत ज्यादा कंफर्ट फील कराइए। उसके स्कूल में क्या हुआ, क्या बातें हुई, ये सब उसके साथ बातें कीजिए, उसके दोस्तों ने क्या कहा, टीचर्स ने क्या कहा, बच्चे को वो अपनापन दीजिए कि उसको लगे कि हाँ उसके माँ बाप ही उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो चलिए अगर आप ऐसा करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो अपने बच्चों के दोस्त बन जाइए। आज से ही एक अच्छे नौजवान बच्चे के किशोर अवस्था में पहुंचने तक माँ बाप को अपने बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उनके अच्छे खान पान का ध्यान रखना चाहिए, उनकी मित्र मंडली कैसी है ये ध्यान रखना चाहिए, उनको क्या खेल कूद पसंद है वो ध्यान रखना चाहिए, उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में जा रहा है ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप माँ बाप है, आपको सब कुछ पहले से ही पता है। ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई वस्तु कृष्णा के साथ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।

0: ब्रिक एंड वॉल इंफ्रा लाया है इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट शोकेस BW प्रॉपर्टी एक्सपो आपके शहर मेरठ में ऑन संडे 11 अक्टूबर एट हारमनी इन गढ़ रोड मेरठ। यहां पर आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी ऑप्शंस इन नोएडा, वृंदावन, धोलेरा, कैंची धाम, तेरी, कसौली, गोवा एंड इवन अंडमान स्टार्टिंग एट जस्ट 12 लाख। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 9999126127।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहां किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यू ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

की प्रस्तुति। जय हिंद, नमस्कार, आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में हम टीबी के रोग की बात करेंगे। टीबी का जो रोग होता है बहुत भयानक होता है। पुराने जमाने में न जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते थे टीबी रोग के बारे में, क्योंकि ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। आज भी अवेयरनेस तो है, लेकिन शर्म कहीं ना कहीं आज भी लोगों के मन के भीतर घर करी हुई है। अगर किसी को टीबी हो जाता है या उसके परिवार में टीबी का पता चल जाता है, तब भी लोग इस बात को किसी को बताते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि समाज में उनका बहिष्कार हो जाएगा, उनके बच्चे की शादी नहीं होगी, लोग उनसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे, है ना, ऐसा उनको लगता है, जबकि ये सच नहीं है। दोस्तों, टीबी अब कोई ऐसी बीमारी नहीं रही है कि जो जानलेवा हो, अगर टाइम पर आप उसकी दवा लेना शुरू कर देते हैं। दवा पूरी तरह से मुफ्त है, सरकार के जो पूरा का पूरा सिस्टम है, तंत्र है, वो आपके लिए लगा रहता है। इसमें सरकारी डॉक्टर्स हैं, निक्षय टीम है, इसके अलावा जैसे सेहत से ही लाभ कई कार्यक्रम के माध्यम से स्मार्ट एनजीओ भी लगातार आप तक जानकारी पहुंचाता है। हमारे आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से हम भी यहां पर लगातार जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सरकार भी नित नए आयोजन करती रहती है। अब ऐसे में जिम्मेदारी आपकी बनती है दोस्तों कि कैसे आप टीबी को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए इस बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमने आज बात की है मेरठ जिले के ट्रीटमेंट सुपरवाइजर डॉक्टर विशाल राणा जी से। पूरे जिले में कहां पर दवाइयों का वितरण किस प्रकार होता है, कहां पर आयोजन हो रहा है और किस तरीके से मरीजों की सहायता होगी, ये सारी जानकारी हमें इनसे प्राप्त हुई। तो आइए छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं डॉक्टर विशाल राणा जी से।

0: जब प्राइवेट में इलाज कराता है, जैसे आपने बताया सरकारी इलाज में तो सारी दवाइयां चेकअप सब कुछ फ्री होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास अगर कोई अपना टीबी का इलाज कराने जाता है तो क्या वो डॉक्टर को पैसे देता है या वहां पर भी सरकार फ्री करा देती है?
1: बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट में इलाज कराता है तो उसको प्राइवेट डॉक्टर के नियमों के आधार पर चलना पड़ेगा। अच्छा। वो डॉक्टर उसकी जो जांच कराए, एक्सरे कराए, बलगम कराए या और भी कोई जांच कराए और जहां वो कराए, जहां के लिए सजेस्ट करे, तो वो जांच वो रोगी कराता है उसके हिसाब से। अगर डॉक्टर उचित समझता है, रोगी की आर्थिक हालत को देखते हुए अगर कहता है कि ठीक है ये जांच आप सरकारी में करा लो, या जो हमारी एक टीम है जो प्राइवेट डॉक्टर से ही कोऑर्डिनेट करती है, सरकार द्वारा एक एनजीओ को भी नियुक्त किया हुआ है, वो लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ जाके उनको काउंसिल करते हैं, उनके यहाँ पे आए हुए रोगियों को एनरोल करते हैं हमारे सिस्टम में और उनको भी सपोर्ट देते हैं, उनके होम विजिट करते हैं, उनको 500 रुपए महीना दिलाने के लिए सारे काम करते हैं। तो निर्भर करता है उस डॉक्टर के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने मरीज को देखता है।
0: लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों, अगर आप भी कहीं से हमको देख और सुन रहे हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ये बताया कि आप सरकारी सिस्टम में अगर आएंगे तो सरकार आपका ध्यान भी रखेगी, आपको पैसे वगैरह भी देगी और आप प्रॉपर दवा खा रहे हैं या नहीं ये भी, जैसा कि सर ने बताया, वो टीम इस बात का ध्यान रखती है, क्योंकि इसकी जो सबसे अहम बात है कि दवाई एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए।
2: सेहत

0: तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर हमको राणा जी ने इतनी काम की बात बताई है कि अगर आपके घर में टीबी का मरीज हो जाता है तो उसके साथ साथ पूरे परिवार को कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, परहेज रखना है, एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन रखना है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरे परिवार का भी एक ट्रीटमेंट चलता है, वो सरकार की तरफ से पूरी तरह से निःशुल्क होता है। सर, अगर कोई जानना चाहे टीबी के बारे में, ज्यादा जानकारी लेना चाहता, अपना इलाज कराना चाहता है, तो आप लोगों से या सरकारी सिस्टम से वो किस तरह से सहायता प्राप्त कर सकता है?
1: देखिये, वैसे तो पूरे मेरठ को डिसेंट्रलाइज करके सरकार ने हर व्यक्ति के नजदीक में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सब जगह टीबी की जांच के इलाज की सुविधाएं शुरू की हुई है। बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, पैरेलल अस्पताल है, वरना कोई जहां भी रहता हो, वो मेरठ में शहर में रहता हो, वो मवाना, वो हस्तनापुर, वो भूड़बराल, वो सरदना, जहां रहता हो उसके ब्लॉक में, उसके आसपास में छोटे बड़े अस्पताल हैं। फिर भी अगर किसी को कोई जानकारी ऐसी लेनी हो तो मैं अपना नंबर यहां दोहराने जा रहा हूं। कोई भी व्यक्ति निसंकोच टीबी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए मुझे फोन कर सकता है और जानकारी ले सकता है। मेरा नंबर है 9917717273। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं अपना नंबर 9917717273। तो कोई भी शंका होने पर, कोई भी जानकारी, किसी भी आवश्यकता में, कोई भी आपका श्रोता निसंकोच मुझे फोन कर सकता है।

0: ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कई। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ, तो सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

0: जी हाँ दोस्तों, सेहत से ही लाभ कई सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं। स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति है, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। और इस खास एपिसोड में आज हमने डॉक्टर विशाल राणा जी से बात की, जो कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं जिला मेरठ के। और चलते चलते सर, आपका क्या संदेश रहेगा हमारे श्रोताओं के लिए?
1: बस मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी व्यक्ति सावधानी रखें, खासतौर से टीबी के रोगी अपने मुंह पर कपड़ा लगा के रखें, मास्क लगा के रखें, खांसते छींकते थूकते और अपना इलाज पूरा करें।
0: जी,
1: इलाज पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप एक आदर्श नागरिक होने का फर्ज निभाते हैं, आदर्श रोगी होने का फर्ज निभाते हैं। और बाकी सरकार और हम पूरा सिस्टम हमेशा इस रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी के साथ है। मैं फिर से आजाद हिंद चैनल का धन्यवाद देता हूं कि इतना जागरूकतापूर्ण कार्यक्रम उन्होंने लिया, अपना समय दिया। और मैं समझता हूं कि जरूर इस जानकारी से हमारे शहर के, हमारे देश के बहुत लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, बहुत ही काम की जानकारियां आपने यहां पर हमारे श्रोताओं के लिए दी। मैं चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप सीधा सरकारी अस्पतालों में जाकर संपर्क कर सकते हैं। और जैसे कार्यक्रम में सर ने भी अपना मोबाइल नंबर भी बताया, तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और सुनते रहे सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर ये खास प्रस्तुति, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। अगर कोई और जानकारी टीबी रोग के बारे में आपको चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो हमारा नंबर है 9639012111। होगी आपसे फिर अगली कड़ी में मुलाकात। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। हर बीमारी को जड़ से हटाना है, ये संकल्प करके रहिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सारशे पंकज। बातें करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के बारे में, जो हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में लोगों, समुदायों और सरकारों को आपदाओं से होने वाले जोखिम को कम करने और उनके प्रभाव को घटाने के प्रयासों के प्रति जागरूक करने के लिए समर्पित है। आगे बातें करेंगे विस्तार से। आप जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

हमारी धरोहर हमारा गर्व है। इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटखा थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं। इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें। विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शे पंकज, और इस वक्त आपसे मैं जुड़ा हुआ हूं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम के माध्यम से। बातें करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के बारे में। इस दिन का उद्देश्य आपदाओं की रोकथाम और तैयारी के महत्व को उजागर करना है, वहीं सामुदायिक स्तर पर जागरूकता फैलाना कि कैसे वो आपदा जोखिमों को कम कर सकते हैं ये जानना है। सरकारों और संगठनों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR में निवेश करने के लिए प्रेरित करना, इसी के साथ जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के बीच संबंध पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य है। बातें चलती रहेंगी, आप जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: क्या आप अपने घर में कचरा फेंकते हैं? नहीं ना, तो फिर अपने देश की सड़कों को गंदा क्यों करना? एक प्लास्टिक की थैली या एक लिफाफा कचरा शायद आपके लिए छोटा हो, पर हमारी धरती के लिए ये बोझ है। प्लास्टिक को नो कहें और कचरे को सिर्फ कूड़ेदान में डालें। देश को साफ रखें, देश को स्वस्थ रखें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शे पंकज और आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। बातें चल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के बारे में। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात जैसी आपदाएं बढ़ी हैं। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि हम इन आपदाओं से होने वाले जान माल के नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन में स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक सहयोग का महत्व बढ़ जाता है। बातें चलती रहेंगी, आप जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम।

अपना आपा खो पैना है, रब नू सिद्धे हो पैना है। चुप, जे तू रोई मैं रो पैना है।

0: ए नहीं होया आ नहीं होया सजना इको राह नहीं होया लोकां कित्थों होना सी साडा ते खुदा नहीं होया।
1: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज, और इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। बातें हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के बारे में। बात अपने देश भारत की करें तो भारत एक आपदा प्रवण देश है, जहां हर साल बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात जैसी कई आपदाएं अक्सर आती रहती हैं। इस दिन सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जागरूकता कार्यक्रम चलाती हैं, स्कूलों में आपदा सुरक्षा ड्रिल होती है, नागरिकों को बताया जाता है कि संकट की स्थिति में क्या क्या करना चाहिए। आप इस दिवस के बारे में कुछ और जानकारी रखते हैं तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर आकर। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपके अपने बिंदास आरजे पंकज को। स्टूडियो से एकदम लाइव हूं आपके साथ और करता हूं अभी एक अच्छी वाली बात, तो ध्यान से सुनिएगा। ये बात अच्छी वाली ये कहती है कि दूसरों से अपने जीवन की तुलना ना करें और ना ही उन्हें जज करें। आपको पता नहीं कि वो किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं या गुजर रहे होंगे। सीधा और सिंपल सा मतलब है, आजकल हम अपने आप को नहीं देखते, बिल्कुल भी अपने बारे में नहीं सोचते। हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों को ज्यादा देखते हैं और तब अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं सीधा सा मतलब ये है, पहले दूसरे को देखते हैं, फिर अपने को देखते हैं और तब अपने बारे में सोचते हैं। तो हमें ये लगता है कि दूसरे की जिंदगी जो है वो बड़ी आसान चल रही है, बड़ी खुशियां हैं उसकी जिंदगी में, हमेशा मुस्कुराता रहता है या हमेशा मुस्कुराती रहती है, इसको तो कोई टेंशन होगी ही नहीं। लेकिन हमें ये क्या पता कि वो किस परिस्थितियों में है और क्या उनकी स्थिति हो सकती है, वो शायद हमारे साथ साझा ना करना चाहती हो। और कभी कभी तो हम ऐसे जज कर देते हैं कि यार कितना एटीट्यूड है इसमें, किसी से बात ही नहीं करता या किसी से बात ही नहीं करती, है ना। हम किसी को भी रैंडमली ऐसे जज करने लग जाते हैं, बट हमें ऐसे जज नहीं करना चाहिए किसी को भी। हो सकता है ना करता हो उनका मन किसी से बात करने के लिए और उनका नेचर ही ऐसा हो या उनकी स्थितियां ऐसी हो कि वो ना करना चाहते हो उस स्थिति में किसी से भी बात। तो हमें बेवजह किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, अपने आप को बस सही रखना चाहिए। तो ये हुई हमारी अच्छी वाली बात। बाकी अभी के लिए क्या कीजिए आप, बस ऐसे ही सुनते रहिए मुझे यानी कि आपके अपने बिंदास आरजे पंकज को आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। और जी हम बात करने वाले हैं मोबाइल के फायदे और नुकसान को लेकर। देखिए आजकल की इस भागदौड़ भरी लाइफ में मोबाइल फोन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है और अहम हो गया है आजकल। मतलब हर किसी के पास मोबाइल फोन है, चाहे आप किसी को भी देख लो। लेकिन हर चीज के बेनिफिट और डिसबेनिफिट जरूर होते हैं और उन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। और यही बेनिफिट डिसबेनिफिट यानी कि फायदे नुकसान हम आपको बताने वाले हैं। तो जाइए आप कहीं मत, बस ऐसे ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। लौटते हैं म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स 24 घंटे, डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे, मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज और आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। टॉपिक है मोबाइल के बेनिफिट और डिसबेनिफिट को लेकर, यानी कि फायदे और नुकसान को लेकर। तो इंसान को सबसे पहले फायदे सुनने होते हैं और नुकसान तो वो बाद में ही सुनता है। खैर, हम फिलहाल फायदों पर सबसे पहले बात करेंगे मोबाइल फोन के। तो क्या फायदा? सबसे पहला एक फायदा तो ये है कि आप हर किसी के संपर्क में आसानी से रह सकते हैं, और आप कहीं मान लीजिए बाहर हैं और रास्ता भटक गए हैं तो जीपीएस सिस्टम की वजह से आप जहां पर आपको पहुंचना है वहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। एंड आप बोर हो रहे हैं तो आप इसे एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, इसमें वेब सीरीज देख सकते हैं, इसमें मूवी देख सकते हैं और चाहें तो गाने भी आप यहाँ पर इसमें सुन सकते हैं। इनफैक्ट आजकल तो ये भी हो गया है कि अगर आपको भूख लगी है, खाना खाना है तो आप खाना भी मोबाइल के थ्रू ही ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आप अपने जरूरी मैसेजेस, अपने जरूरी मेल्स चेक कर सकते हैं। और एक बात ये है कि आजकल तो सभी मोबाइल फोन्स में कैमरा जो है काफी अच्छा खासा आने लगा है, तो आप कहीं पर भी जाते हैं तो अपनी एक अच्छी सी फोटो, अपनी एक अच्छी सी सेल्फी ले सकते हैं। एंड साथ ही साथ आजकल सभी मोबाइल फोन्स में फ्लैश लाइट भी आने लगी है, तो मान लीजिए अगर आप कहीं से आ रहे हैं रात के समय और रास्ते में अंधेरा है तो आप मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर, मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाकर आगे चल सकते हैं रोशनी के साथ। तो ये तो हुए मोबाइल फोन के फायदे, लेकिन नुकसान पर बातें करना अभी बाकी है। तो जाइए आप कहीं मत, बस ऐसे ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज और आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। और अभी थोड़े टाइम पहले मोबाइल फोन के जो फायदे थे वो मैं आपको गिनवा रहा था, लेकिन अब बात थोड़ी सी नुकसान पर भी हो जानी चाहिए कि मोबाइल फोन से क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं, क्या क्या इसके डिसबेनिफिट्स हैं। सबसे पहला है कि इससे निकलने वाली रेडिएशन हमारे मानव शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए रात को सोते समय अपने आप से मोबाइल फोन को आपको दूर रखना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ दूसरे नुकसान पर अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल फोन के कारण आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। इनफैक्ट घर का कोई छोटा सा हिसाब किताब भी है ना, वो भी आपको जोड़ना या घटाना है तो तुरंत आप मोबाइल फोन उठा लेते हैं और कैलकुलेटर खोल के वहीं पर उसमें व्यस्त हो जाते हैं। और देखा ये भी जाता है कि ज्यादा से ज्यादा समय स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मोबाइल फोन के साथ बिजी रहते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ही साथ मोबाइल फोन्स में आजकल कुछ गेम्स ऐसे आते हैं जिनसे विद्यार्थी जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, इतने ज्यादा उनके एडिक्टेड हो जाते हैं कि अपना खाना भूल जाते हैं, अपनी पढ़ाई भूल जाते हैं, और उन्हें कोई रोकता है उन्हें खेलने से, मोबाइल फोन में जो गेम्स हैं उन्हें खेलने से कोई रोकता है तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और मिसबिहेव करने लग जाते हैं अपने बड़ों के साथ। तो एक डिसबेनिफिट ये भी है। सो गेम्स आप खेलें, कभी कभी खेलें, इतना मत खेलें कि आपका बिहेवियर ही पूरा चेंज हो जाए और बेकार हो जाए, तो ये नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ होते हैं डिसबेनिफिट्स मोबाइल फोन के, इन्हें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल आप जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना। आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

ये है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना पिंदा सार शे पंकज, जो कर रहा है एकदम लाइव आपसे बातें। एंड अभी बात करते हैं वार्षिक कैलेंडर की। तो सभी को अगर तारीख देखनी होती है, कोई दिन देखना होता है, तो तुरंत अपने कैलेंडर की तरफ वो जाते हैं और उसमें अपनी तारीख देखते हैं। उसमें अपना कोई भी उन्हें दिन देखना होता है तो वो देखते हैं। कोई कोई बर्थडे देखता है कि इस तारीख में इसका बर्थडे है, तो क्या तारीख पड़ रही है, क्या दिन पड़ रहा है, या कोई फेस्टिवल है तो उसके बारे में देखते हैं कि किस दिन ये पड़ रहा है, किस तारीख में ये पड़ रहा है। और आजकल तो मोबाइल फोन के अंदर भी कैलेंडर आने लगे हैं। मोबाइल फोन के अंदर ही हम देख लेते हैं सभी कुछ कि किस दिन कौन सी हॉलीडे है, किस दिन क्या है, किस दिन क्या है ना। बट अगर बात करें साल 1582 के कैलेंडर की, अगर आप साल 1582 के कैलेंडर को मोबाइल फोन के कैलेंडर में देखते हैं, तो आप 10 दिन कम पाएंगे। और ये 10 दिन कम आपको देखने को मिलेंगे अक्टूबर के मंथ के। मोबाइल फोन का जो कैलेंडर है, अगर हम उसमें साल 1582 का कैलेंडर देखते हैं, तो उसमें अक्टूबर के मंथ में जो अक्टूबर का महीना है वो सीधा 4 अक्टूबर से सीधा 15 अक्टूबर को जाता है। यानी कि बीच के जो 10 दिन हैं वो उसमें दिखाई ही नहीं देंगे आपको। अब आप ये सोच सकते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा हुआ होगा, तो वो कारण भी मैं आपको बताऊंगा। चाहिए आप कहीं मत, बने रहिए यहीं पर और सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने रेडियो स्टेशन को और मुझे, यानी कि आपके अपने पिंदा सार शे पंकज को। लौटते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

जय हिंद, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज, जो फुल एनर्जी के साथ यहां पर अभी अपने स्टूडियो में बैठा हुआ है और लाइव आपसे बातें शादी कर रहा है, आप तक कुछ नई नई बातें पहुंचा रहा है। अच्छा, अभी कुछ समय पहले मैं बात कर रहा था साल 1582 के कैलेंडर की। अगर हम इस कैलेंडर को अपने मोबाइल फोन के अंदर देखते हैं तो इसमें 10 दिन हमें कम मिलते हैं अक्टूबर के महीने में। ये बात आपसे मैं कर रहा था और इसका कारण आपको मैं बताने वाला था। तो 4 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक के बीच का गैप है इस कैलेंडर में, साल 1582 के कैलेंडर में। अब इस गैप का कारण मैं आपको बताता हूँ। यही बताने के लिए तो अभी दोबारा लौटा हूँ ना, थोड़े टाइम पहले कहकर गया था कि बताऊंगा, अभी आपको लौट कर तो बताता हूँ। अभी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सूर्य की गति पर चलने वाले इस कैलेंडर में हर साल 11 मिनट 30 सेकंड कम हो जाते थे और 16वीं सदी तक ये 10 दिन पिछड़ चुका था। इस कमी को दूर करने के लिए ग्रेगोरी कैलेंडर में 10 दिन कम कर दिए गए थे उस टाइम पे। तो ये रीजन रहा था और इस वजह से दिन जो है कम हुए थे अक्टूबर के महीने में। ठीक है, वैसे कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी एडवांस नॉलेज बढ़ाने वाली बात हो गई है ना। आप भी चाहें तो सभी की नॉलेज बढ़ा सकते हैं अपनी बातों के साथ। आपके पास भी तो कोई ना कोई नॉलेज वाली बात होती होगी ना, तो आप अपने पास मत रखा कीजिए, उसे साझा किया कीजिए हमारे साथ, हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। ठीक है जी, फिलहाल के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि आपके अपने बिंदास आरजे पंकज को, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

सिर्फ कागज का टुकड़ा भविष्य नहीं लिखता, आपके हाथों का हुनर लिखता है। कोई काम छोटा नहीं होता अगर उसे दिल से किया जाए। अपनी कला को पहचानिए, उसे तराशिए। हुनर है तो कद्र है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर आप। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना पेंदार सार शे पंकज। अच्छा, हम जब भी यहां पर आते हैं तो आपसे ढेर सारी बातें कर ही लेते हैं, लेकिन अगर आप हमसे बातें करना चाहें, हमें कोई सजेशन देना चाहें, हम तक कोई अपनी बात पहुंचाना चाहें या अपने किसी फेवरेट ट्रैक को सुनना चाहें तो आप ये कैसे कर सकते हैं? ये कुछ ही को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको अब मैं बता ही देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना होता है कि आपको कनेक्ट होना होता है हमसे हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से। हम फेसबुक यानी कि मेटा पर भी हैं, और हाँ, इसके साथ ही साथ हम इंस्टाग्राम पर भी हैं। वहां पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से। और हमारे स्टूडियो का भी नंबर होता है, जो कि होता है 9639012111। इस पर भी आप कॉल या मैसेज करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी कोई रिक्वेस्ट, अपनी कोई बात हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट किसी की पूरी हिम्मत तोड़ सकता है। स्क्रीन के पीछे छिपकर नफरत फैलाना आसान है, पर याद रखिए, आपके शब्द किसी का घाव बन सकते हैं। सोचिए फिर टाइप कीजिए। इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं, नफरत नहीं प्यार फैलाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किशोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। आगामी 21 अक्टूबर को हम बड़े ही धूमधाम से मनाने जा रहे हैं अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस, और इसे आयोजित किया जा रहा है स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय और हमारे आदरणीय फाउंडर डॉक्टर अतुल कृष्ण जी के सौजन्य से। आज अखंड भारत के स्वतंत्रता दिवस पर चर्चा करने के लिए, बातें करने के लिए और अपनी कुछ देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं सुनाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर हरिओम पवार जी। सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: आभार आपका मुझे ये अवसर देने के लिए। आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, और मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ, हर्षित हूँ कि मुझे आज दूसरी बार आपके इस माध्यम से बात करने का अवसर मिला है। आज फिर पुनः एक ऐसा पावन अवसर है, हमारे डॉक्टर अतुल कृष्ण सुभारती के संस्थापक, सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं, जैसा अभी पूर्ववर्ती श्री श्याम मोहन जी ने कहा, देश प्रेम, राष्ट्र जागरण, राष्ट्र वंदना, राष्ट्र प्रथम, और लगभग पूरे तन मन धन से देश के लिए समर्पण की भावना लिए हुए, और विशेष रूप से नेताजी के प्रति तो उनका समर्पण ऐसा है जिस पर टिप्पणी करना भी संभव नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति उनकी निष्ठा, उन्हीं की नहीं, हम सबकी निष्ठा, हम सबकी श्रद्धा, हम सबका लगाव, कुछ हो ना हो कम से कम वो व्यक्तित्व एक प्रेरणा है हिंदुस्तान की आने वाली समस्त पीढ़ी के लिए कि राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति आस्था, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, राष्ट्र के प्रति प्यार, राष्ट्र के जागरण के प्रति लगाव, अगर कहीं सीखना है, किसी को सीखना है, उसका कोई महाविश्वविद्यालय है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। अब डॉक्टर अतुल कृष्ण जो 21 अक्टूबर को अखंड भारत के नाम पर, अखंड भारत के संदर्भ में, अखंड भारत के नेताजी के सपने के लिए जो मेरठ में समारोह कर रहे हैं, हम दुआ करते हैं कि वो एक बिल्कुल एक अविस्मरणीय हो, जैसा कभी पहले कभी हुआ नहीं हो। मैं नहीं जानता इससे हमारे नेताजी भी नहीं आ जाएंगे, इससे कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन भी नहीं आ जाएगा, लेकिन एक भावना जगेगी आने वाली पीढ़ी में, नई पीढ़ी में, समाज में, समाज के लोगों में कि कौन थे वो, उनके प्रति सोचो तो, उनका समर्पण देखो तो, उनके त्याग के बारे में विचारो तो, उस आदमी के प्रति अगर जरा भी सोचोगे तो तुम्हारे भीतर की, अंदर की, आत्मा की कुछ कुछ कुछ लहरें राष्ट्र प्रेम की ओर मुड़ेंगी, राष्ट्र प्रेम के बारे में सोचेंगी, राष्ट्र प्रेम के बारे में आप में उत्प्रेरणा जारी होगी। इसलिए और कोई उद्देश्य पूरा हो ना हो ऐसे किसी कार्यक्रम से मैं बधाई देता हूं डॉक्टर अतुल कृष्ण जी को कि वो कम से कम समाज के हर वर्ग में, समाज की हर वर्ग की, हर आयु वर्ग की पीढ़ी में वो एक ज्योति जलाना चाहते हैं, वो एक याद जगाना चाहते हैं, वो एक राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को संबल देना चाहते हैं, महसूस कराना चाहते हैं सब कि प्रथम तो राष्ट्र ही है, राष्ट्र से पहले तो कुछ है नहीं। और नेताजी ने जो किया, नेताजी जो कर गए, मैं इस बहस में नहीं पड़ता, नहीं जाती नेताजी की मृत्यु कैसे हुई या नेताजी जीवित हैं या जीवित नहीं हैं, ये बहस अब कालातीत हो गई है, लेकिन नेताजी का नाम है, रहेगा, आजीवन रहेगा, कम से कम जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक नेताजी का नाम भी रहेगा। हिंदुस्तान अमर है तो नेताजी का नाम भी अमर है। उस जैसा व्यक्तित्व जो आदमी इंग्लैंड में जाकर के आईएएस आईसीएस बनने के बाद उसको छोड़ दे, और बने केवल इसलिए कि पिताजी ने ताना दे दिया था कि ये मुश्किल काम है, पहले उन्होंने मुश्किल काम करके दिखाया, उसको छोड़ के आए, कितना बड़ा त्याग का प्रचंड तूफान उनके भीतर होगा, राष्ट्र के प्रति कितनी बड़ी क्रांतिकारी ज्वाला उनके भीतर जल रही होगी, देश में अगर आप भारत के नेताओं से उनका सामंजस्य नहीं बैठा, उनसे उनके वैचारिक मतभेद हुए, तो उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया, उन क्रांतिकारियों के खिलाफ वो खड़े नहीं हुए, भारत के राजनीतिक नेताओं के खिलाफ जो राजनीति के लिए स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने कोई युद्ध नहीं खड़ा किया, चुपचाप चले गए और दुनिया में भारत की धरती से बाहर जाकर के अपनी ताकत के बल पर, कौशल के बल पर, बुद्धि के बल पर एक फौज खड़ी कर दी। और सच यह है कि अंग्रेज उस फौज से डरा। भारत की आजादी का मुझसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा श्रेय किसको है, तो भारत की आजादी का सबसे बड़ा श्रेय 75% केवल और केवल नेताजी और नेताजी की बनाई हुई आजाद हिंद फौज को है। बाकी 25% में हमारे वो सब नेता क्रांतिकारी वो सब आते हैं जिनके बलिदानों से हम उनके बलिदानों के प्रति भी समर्पित हैं, उनके बलिदानों के प्रति भी अपना सर झुकाते हैं, लेकिन इस सत्य को स्वीकारने से हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि अंग्रेज क्रांतिकारियों के कारण डर के नहीं भागे, क्योंकि क्रांति की अंतिम घटना 1931 में समाप्त हो गई थी। 1931 के बाद 1947 तक एक भी क्रांतिकारी कोई घटना घटी नहीं, किसी क्रांतिकारी ने बम फोड़ा नहीं, किसी पर गोली चलाई नहीं। तो अंग्रेज 16 साल बाद डर गए हों कि क्रांतिकारियों की आत्मा द्वारा से आके आंदोलन ना कर दे, इसलिए आजादी दे के भाग गए हों, ऐसा नहीं है। अंग्रेज भागे कि नेताजी ने एक जज्बा पैदा कर दिया है, नेताजी फौज बना सकते हैं, अगर नेताजी की इस भावना के बल पर हिंदुस्तान के और लोगों की भावना भी जागृत होंगी तो आपको भागना ही पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजों के भागने के पीछे सबसे बड़ा भाव नेताजी की फौज का था, ऐसा मैं स्वीकारता हूँ। उनको याद करना पुण्य है, उनको याद करना पूजा है, उनको याद करना एक ऐसी सांस्कृतिक गतिविधि है जो हमारी सांस्कृतिक चेतना को बल देगी, हमारी सांस्कृतिक चेतना को मशाल देगी। वो मशाल थे, ज्योति स्तंभ थे, प्रकाश स्तंभ थे, उन्हीं की प्रकाश की किरणें आज भी हैं और वो आगे भी मिलती रहेंगी। मैं अतुल जी के इस प्रयास को पुनः एक बार सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ कि वो 21 अक्टूबर को नेताजी के सपने को, नेताजी के अखंड भारत के देखे हुए सपने की याद को, उस याद के माध्यम से जनता में राष्ट्र प्रेम के प्रति भावनाएं जगाने के लिए जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें हम सबको भाग लेना चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अतुल एक राष्ट्रभक्ति की जलती हुई ऐसी लौ है जिसके भीतर बढ़ने वाला तेल कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलकर उस मसाल में उनके साथ हाथ लगा देने चाहिए जो वो मसाल जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि 21 अक्टूबर को हम इस दिन को यादगार दिन बनाएंगे, देश के प्रति समर्पण के नाम पर, देश के प्रति श्रद्धा के नाम पर, देश के प्रति प्यार के नाम पर, देश के प्रति लगाव के नाम पर।
0: क्या बात है। जिस प्रकार ना एक छात्र जीवन में छात्र को खुशी होती है जब वो परीक्षा देता है, उसका परिणाम आता है और वो सफल हो जाता है, उसमें उस तरीके की ही खुशी आज मुझे हो रही है, क्योंकि अभी तक मैं टीवी पर देखता था, स्टेज पर सुना है और आज समक्ष बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, पास में बैठे हैं और बातें चल रही हैं। और ये थोड़ा अन्याय हो जाएगा मेरे उन श्रोताओं के लिए जो रोजाना मुझे सुनते हैं और इतने बड़े अतिथि आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे ये विनम्र निवेदन न करूं कि सर हमारे श्रोताओं के लिए
1: नहीं, पंकज जी मैं श्री आरपी सिंह जी जब भी बुलाते हैं और मैं कविता नहीं सुनाऊं तो मुझे भी लगेगा कि मेरे साथ भी अन्याय ही हो गया। मैं एक व्यावसायिक कवि हूं लेकिन सुभारती मेरा घर है, सुभारती मेरा परिवार है। मैं जब भी सुभारती परिवार में आता हूं मुझे ऐसा लगता है मैं अपने परिवार में आया हूं। आरपी सिंह साहब ने मुझे जब जब भी बुलाया, जब भी वो बाहर भी कहीं चले गए तो वहां भी बुलाया, यहाँ भी जब बुलाया तो मैं, मुझे बहुत आत्मिक खुशी हुई। ऐसा लगा मेरे अपने घर में भी मुझे थोड़ा सा प्यार मिल रहा है। और मैं लगभग कविताएं सुना के ही गया, बिना सुनाए मैं गया नहीं कभी। सुमनेश जी ने आज बहुत अच्छी कविता जो मैंने पहले नहीं सुनी थी और बहुत आज के दिन की कविता, 31 अक्टूबर को इस कविता को दोहराया जाना चाहिए, इस कविता की बारंबार आवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर एक श्रेष्ठ भावों का जो प्रदर्शन हो सकता है वो सुमनेश जी ने अपनी कविता में किया। ऐसे मैंने भी एक कविता लिखी थी, देश को पटेल या सुभाष चाहिए, लेकिन वो बहुत पुरानी कविता है मेरी, मुझे आज याद नहीं। तो मैं ऐसी दूसरे संदर्भ की राष्ट्र प्रेम से लिपित एक कविता सुना देता हूँ। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कम लेता है नभ के चांद सितारों से, पंचाली के चीर हरण पर जो चुपाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। दहशत गर्दो अपने दहशत गर्दो अपने घर में चाहे खेलो खेलो कूदो खेल करो, दहशत गर्दो अपने घर में चाहे जो भी खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान नेताजी होते तब भी उनकी भावनाएं देश के प्रति समर्पित थी। मैं आज भी देश के प्रति किसी भी देश से प्यार करने वाले के दिल में जो होता है वही गाने की कोशिश करता हूँ। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौओं का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से

ज्ञान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। नेताजी के समय भी गरम दल और नरम दल की यही बहस थी कि हम

0: होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नेताजी ने तभी छोड़ दिया था। मैं आज कह रहा हूँ, आज के संदर्भ में भी गांधी जी पूरा संपूर्ण गांधी बनने से लाभ नहीं। मैं गांधी जी का विरोधी नहीं हूँ, मैं गांधी जी की पूजा करता हूँ, गांधी जी का समर्थक हूँ, लेकिन आज के संदर्भ में गांधी जी के कुछ वो महान विचार, महान सद्भावना के विचार अप्रासंगिक हो गए हैं जब हम टेररिस्टों से घिर गए हैं, जब बंदूकों की गोली फैसले करने लगी है, आतंकवादी छा गए हैं, तब गांधी की वो विचारधारा जो समझौतावादी थी, जो सब सहने वाली थी, उससे काम नहीं चल रहा है। इसलिए मैंने लिखा है, भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो। दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला, हम उनके देश को समर्पित करते हैं कुछ पंक्तियां। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं, लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। सोही रावल पिंडी जब खामोश दिखाई देती है, उसको सपनों में भी ब्रह्मोस दिखाई देती है। उसको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती है। धन्यवाद। मैं पुनः निवेदन करूंगा सुभारती के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण की जो ये पूजा जैसा एक मुहिम है, पूजा जैसा एक ये कार्यक्रम है, पूजा जैसा एक ये अभियान है, इस अभियान में हम सब मेरठ के लोग सब मिलकर शामिल हों। और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM से मैं ये संदेश देना चाहूंगा अपनी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, कॉलेज के विद्यार्थियों को, प्रोफेसर्स को, वकीलों को, समाज के सभी वर्गों को, कि याद करो नेताजी को इसलिए कि आप देश को याद कर सको, याद करो नेताजी को इसलिए कि आप देश से प्यार कर सको, याद करो नेताजी को इसलिए कि देश के प्रति आपके निष्ठा, आपका लगाव, आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा बनी रहे, जागृत रहे। देश तब रहेगा जब आप देश के साथ रहेंगे। देश तब रहेगा जब आप देश को बहुत बहुत लगाव से अपने दिल का हिस्सा मानेंगे। उसी प्रक्रिया के लिए नेताजी को याद कीजिए। 21 अक्टूबर को अखंड भारत के सपने के साथ डॉक्टर अतुल के इस सपने को साकार कीजिए, जो वो लोगों में चेतना जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जगे लोगों में चेतना, जगे प्यार की लहरें, जगे प्यार का विश्वास, जगे देश के प्रति निष्ठा, जगे। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।
1: उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं 21 अक्टूबर के लिए, जब हम मनाने जा रहे हैं अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस। एक भव्य रैली होने जा रही है हमारे क्रांति धरा मेरठ में और आप सभी ज्यादा से ज्यादा वहां पर जुड़िए और आइए एक साथ मिलकर अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। फिलहाल मैं लेता हूं आपसे इजाजत इस वादे के साथ कि जल्द ही मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, किसी नए अतिथि के साथ, और यहीं पर मिलेंगे सेम टाइम सेम शो पर। तब तक आप बस यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता। बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए। अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने, इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

जान में आ जाता है, क्योंकि इससे आंखों की पुतली सफेद होने लगती है, तो इलाज भी समय से संभव हो जाता है। लेकिन काला मोतिया, खासतौर से ओपन एंगल या खुले कोण वाला, अगर मरीज उसके प्रति स्वयं जागरूक ना हो ना, तो उसका डॉक्टर कभी सामान्य नेत्रों की जांच करते समय अगर चैतन्य न हो, तो ये धीरे धीरे चुपके चुपके अपना काला जाल बिछाकर आंखों में अंधेरा कर देता है। और अक्सर